0: पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। मन को उपयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। नदी की प्रवाहमान धारा की तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहें, तो स्वास्थ्य बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोएगा। रोगी होना शरीर का स्वभाव नहीं है, रुग्णता प्रकृति नहीं विकृति है। रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त शारीरिक स्वास्थ्य है। शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थक जाता है, शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्लांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार हैं और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है मानसिक विकार शरीर को विकृत कर देते हैं।
1: सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:56 हो रहे हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर युवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के जून महीने के आज 6 तारीख है और दिन है शनिवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा को। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में बारी बारी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर प्रसारित होगा गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर प्रसारित होगा आपातानी श्रोताओं का समाचार। 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। 7:35 पर आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम सदा बहार। और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर।

10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहले प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियानो कल नई दिल्ली में भारत

इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग, लेकर आया हूं श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर भक्ति गीत कार्यक्रम। श्रोताओं, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे आदि हैं, अनंत हैं और संपूर्ण सृष्टि की चेतना के प्रतीक हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा हमें पवित्रता का संदेश देती है, तो उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा हमें शीतलता और संतुलन का मार्ग दिखाता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, धैर्य संयम और विश्वास के साथ हर कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। वो भले ही दयालु हैं और अपने भक्तों की सच्ची पुकार अवश्य सुनते हैं। आज के इस विशेष भक्ति कार्यक्रम में हम सुनने जा रहे हैं शिव भक्ति से ओतप्रोत एक अत्यंत मधुर प्रस्तुति, गजल और भक्ति संगीत के महान गायक जगजीत सिंह की आत्मा को छू लेने वाली आवाज में ओम शिवाय हरि ओम शिवाय। तो आइए अपने मन को शांत कीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और भक्ति के इस दिव्य सफर पर हमारे साथ चलिए। हर हर महादेव।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में शिव भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: Hil polga loknan arsogon nuk talirunam galo minkin agma menjido menkin menjina se koi jirdo. Maro Prime Minister Narendra Modi bu surat lo

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशियां, ताजगी और नई ऊर्जा के साथ शुरू हुई होगी। और आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग। दोस्तों, सुबह का समय होता है खुद को बेहतर बनाने का, अपने तन और मन को नई शक्ति देने का और दिन भर की भागदौड़ के लिए खुद को तैयार करने का। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा मॉर्निंग हेल्थ शो सुबह सवेरे। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं योग के आसान और लाभदायक आसनों की, रोजाना की सरल एक्सरसाइज की, स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की और बेहतर खानपान और स्वस्थ जीवन शैली की। तो चाहे आप सुबह की सैर पे हो, योग की तैयारी कर रहे हो या फिर चाय की चुस्कियों के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हो, अगर कुछ पल सिर्फ आपकी सेहत और खुशहाली के नाम है तो लीजिए एक गहरी सांस, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लीजिए और तैयार हो जाइए एक हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव मॉर्निंग के लिए। और शुरुआत करते हैं आज के सुबह सवेरे के योग सेगमेंट। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ शरीर को थोड़ा ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। घुटनों में दर्द, कमर की परेशानी, शरीर में अकड़न, नींद की समस्या और थकान जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोजाना कुछ आसान योगासन और प्राणायाम करके वरिष्ठ नागरिक अपने शरीर को स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। तो चलिए आज के योग सेगमेंट में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योगासन के बारे में बात करते हैं। पहला है तारासन। इसे करने के लिए सिर सीधे खड़े हो जाए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को ऊपर की ओर खींचे, 10 से 15 सेकंड तक रुके और सामान्य स्थिति में लौटाए। इसके फायदे हैं, शरीर का संतुलन बेहतर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और शरीर में लचीलापन आता है। अगला योगासन है वृक्ष आसन। इसे करने के लिए एक पैर पर खड़े हों, दूसरे पैर को जांग पर रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें, कुछ सेकंड तक संतुलन बनाए रखें। इसके फायदे हैं, पैरों और घुटनों को मजबूती मिलती है, ध्यान और संतुलन बेहतर होता है। यदि संतुलन बनाने में कठिनाई हो तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगला आसन है वज्रासन। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एरियों पर बैठ जाए, हाथ घुटनों पर रखें और पीठ सीधे रखें, 5 मिनट तक इसी अवस्था में बैठे रहें। इसके फायदे हैं, पाचन बेहतर होता है, गैस और अपच में राहत मिलती है, मानसिक शांति मिलती है। अगला है भुजंगासन। इसे करने के लिए पेट के बल लेते जाएं, हथेलियों कंधों के पास रखें, धीरे धीरे छाती को ऊपर उठाएं, 10 सेकंड तक रुकें और वापस आ जाएं। इसके फायदे हैं, कमर दर्द में राहत, रीढ़ मजबूत होती है और शरीर में लचीलापन बढ़ता है। अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए आरामदायक मुद्रा में बैठे, एक नतुने से सांस ले और दूसरे से छोड़े और इसे फिर उल्टी दिशा में दोहराए, 5 से 10 मिनट तक इसे आप करें। इसके फायदे हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद मिलती है और मन शांत और तनाव मुक्त रहता है।

अगला है ब्रह्मारी प्राणायाम। इसे करने के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी ब्रह्म ध्वनि निकालें। इसके फायदे हैं, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है और मानसिक शांति मिलती है। अगला और अंतिम आसन है शवासन। इसे करने के लिए पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। 5 से 10 मिनट तक आराम करें। इसके फायदे हैं, शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है और थकान और तनाव दूर होता है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सलाह है, योग हमेशा धीरे धीरे करें। किसी भी आसन में दर्द महसूस हो तो तुरंत रोक जाए। जरूरत पड़ने पर कुर्सी या दीवार का सहारा लें। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। रोज 20 से 30 मिनट योग करें। याद रखिए दोस्तों, उम्र भरना स्वाभाविक है, लेकिन स्वस्थ और सक्रिय रहना हमारे हाथ में है। रोज थोड़ा सा योग, थोड़ी सी सैर और सकारात्मक सोच जीवन को खुशहाल बना सकती है। इसी संदेश के साथ आज का योग सेगमेंट यही समाप्त होता है। स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल्प।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम के हेल्थ सेगमेंट में। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, स्वच्छता ही स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। हम चाहे कितने भी अच्छा भोजन करें, योग करें या व्यायाम करें, लेकिन अगर हम अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो बीमारियों का खतरा बना रहेगा। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम बात करते हैं व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता के महत्व की। सबसे पहला है, रोजाना स्नान करना क्यों जरूरी है? दिन भर शरीर पर धूल, पसीना और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। इसके फायदे हैं, त्वचा साफ और स्वस्थ रहती है, शरीर से दुर्गंध नहीं आती, संक्रमण और त्वचा रोगों को खतरा कम होता है और शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहती है। तो इसलिए रोजाना स्नान करना जरूरी है। अगला है, हाथों की सफाई सबसे महत्वपूर्ण। हमारे हाथ दिन भर कई चीजों को छूते हैं जिन पर कीटाणु हो सकते हैं। और कब हाथ धोना चाहिए? भोजन से पहले और बाद में, शौचालय के बाद, बाहर से घर आने पर, कांसने या छींकने के बाद। इसके फायदे हैं, पेट और संक्रमण संबंधी बीमारियों से बचाव, वायरस और बैक्टीरिया के फैलाव में कमी। अगला है, दांतों और मुंह की स्वच्छता। दिन में दो बार ब्रश करें, जीभ की सफाई करें और भोजन के बाद खुला जरूर करें। इससे दांत मजबूत रहते हैं, मुंह की दुर्गंध से बचाव मिलता है और मसूरों की बीमारियां कम होती है। अगला है, साफ कपड़े पहनने की आदत। ध्यान रखें, रोज साफ कपड़े पहने, अंडरगार्मेंट्स नियमित रूप में बदलते रहिए और पसीने वाले कपड़े लंबे समय तक ना पहने। इससे त्वचा संक्रमण से बचाव मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नाखूनों की सफाई। लंबे और गंदे नाखूनों में सबसे अधिक कीटाणु छिपे होते हैं, इसलिए नियमित रूप से नाखून काटें, उन्हें साफ रखें। इससे पेट की बीमारियों से बचाव मिलता है और संक्रमण का खतरा कम होता है। घर और आसपास की सफाई। ध्यान रखें, घर में कूड़ा जमा ना होने दें, पानी जमा ना रहने दें, रसोई और बाथरूम साफ रखें। इससे मच्छरों और कीड़ों से बचाव मिलता है, डेंगू मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है। भोजन की स्वच्छता। ताजा और दका हुआ भोजन खाएं, फल और सब्जियां धोकर खाएं, साफ पानी का उपयोग करें। इससे फूड पॉइजनिंग से बचाव मिलता है और पाचन बेहतर रहता है। तो आज का स्वस्थ संदेश है, जहां स्वच्छता होती है वहां स्वास्थ्य, खुशहाली और सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, रोज की छोटी छोटी

सफाई की आदतों को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। तो इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे सुबह सवेरी में एक नई स्वास्थ्य जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, नई सुबह की सुनहरी किरणों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आदाब और गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर और लेकर हाजिर हूं मॉर्निंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के साथ। दोस्तों, हर नई सुबह अपनी साथ लाती है नई उम्मीदें, नए अवसर और नई जानकारियां, और इन्हीं जानकारियों से आपको अपडेट रखने के लिए हम लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा खबरें, आपके अपने क्षेत्र यानी ईटानगर के लोकल न्यूज, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और मौसम की जानकारी और भी बहुत कुछ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर यथायत रखा है। बढ़ती तेल कीमतों, रुपयों पर दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई ने ब्याज दर बढ़ाने के बजाय रुपये को सहारा देने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। जनवरी मार्च 2024 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो अनुमान से बेहतर है। कृषि, निर्माण और निजी निवेश में वृद्धि को इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा कि भारत की सीमाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसमें ड्रोन, आधुनिक कैमरे और उन्नत निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। रुपए को मजबूत करने के लिए सरकार और आरबीआई के नए कदम। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने विदेशी बॉन्ड निवेशकों को कर राहत देने तथा एनआरआई डॉलर जमा योजनाओं को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इन कदमों से अरबों डॉलर के निवेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। परीक्षा प्रणाली को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन चर्चा में है। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सुधार की मांग की है। पीपा विश्व कप 2024 के प्रसारण का समझौता। भारत में 2026 पीपा वर्ल्ड कप के प्रसारण अधिकारों को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। फुटबॉल प्रशंसकों के लिए टूर्नामेंट के प्रसारण की व्यवस्था लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। और रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। लंदन में यूक्रेन को लेकर अहम बैठक। कल लंदन में इमैनुअल मैक्रोन, कियर स्टार्मर, फ्रेडरिक मर्ज और वोलोदिमिर जेलेंस्की की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में यूक्रेन को समर्थन और रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। अमेरिका ईरान वार्ता पर दुनिया की नजर। ईरान ने कहा कि वे अमेरिका के साथ केवल निष्पक्ष और व्यापक समझौते को स्वीकार करेगा। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता में प्रगति का दावा किया है। मध्य पूर्व तनाव से तेल बाजार में उथल पुथल। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और मिसाइल हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी उछाल देखा गया है। इससे दुनिया भर में महंगाई और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एआई सेक्टर में निवेशकों का उत्साह बरकरार। भूराजनीतिक तनाव के बावजूद दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में निवेश का उत्साह बना हुआ है। कई बड़े टेक कंपनियां नए एआई उत्पादों और विस्तार योजनाओं की घोषणा कर रही है। लेबनान इजराइल सीमा पर तनाव बना हुआ। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलहाल इजराइल के साथ किसी उच्च स्तरीय बैठक की संभावना कम है और पहले युद्ध विराम को मजबूत करना जरूरी है। इससे क्षेत्र में शांति प्रक्रिया

में लिए गए फैसलों के आधार पर बनाई गई हैं, जिनमें मूल आदिवासी अधिकारों, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातीय आईएलपी फ्रेमवर्क और इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। सीएम कॉल्स फॉर कलेक्टिव एक्शन टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति नए सिरे से संकल्प लेने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण ही समृद्ध भविष्य की नींव है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक संदेश में खांडू ने लोगों से प्रकृति को बचाने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। ऑर्गेनाइजेशन सीक्स री टेंडरिंग ऑफ फ्रंटियर हाईवे पैकेजेस। ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मियाओ कारशांग विजयनगर फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के तहत एमएस भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और एमएस जीआरआरबी एसोसिएट्स को दिए गए हाईवे पैकेज को रद्द करने और उनके लिए दोबारा टेंडर निकालने की मांग की गई है। एपीटीईए अनाउंसेस इनडेफिनिट पेन डाउन स्ट्राइक फ्रॉम 15 जून। अरुणाचल प्रदेश टीचर एजुकेटर्स एसोसिएशन ने सभी डाइट और एससीईआरटी में 4 और 5 जून को आयोजित अपनी पेन डाउन हड़ताल का दूसरा चरण समाप्त किया और कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 15 जून से अनिश्चितकालीन पेन डाउन हड़ताल शुरू करेंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट साइन एमओयू टू फॉस्टर साइंटिफिक कोलाबोरेशन। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देते हुए बागवानी विभाग ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद वैज्ञानिक सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बागवानी का टिकाऊ विकास करना है। एक्सपर्ट फील नीड फॉर हिमालयन कोड फॉर लिविंग। एक्शन इंडिया और टून यूनिवर्सिटी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय हिमालयन एक्शन स्कूल सम्मेलन टून यूनिवर्सिटी में 3 जून को सकारात्मक माहौल से संपन्न हुआ। प्रोटेक्टिंग नेचर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नर केटी फरनायक ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और उन्होंने हर नागरिक से राज्य में हरियाली बढ़ाने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजभवन में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए गवर्नर ने शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। सन सीक्स एजुकेशन मिनिस्ट्रीज इंटरवेंशन इन डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन इश्यू। नेरिस्ट के स्टूडेंट्स यूनियन ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट के अखंडता की रक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से तुरंत दखल देने की मांग की है और मंत्रालय से आग्रह किया कि वे नेरिस्ट के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र नाथ एस का इस्तीफा स्वीकार न करें। तो दोस्तों, ये था आज के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और लोकल न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आइए सुनते हैं सोनू निगम और तौसिफ अख्तार के आवाजों में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से ये बेहतरीन गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंटरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपसे थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिम श्रोताओं का समाचार।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सदाबहार के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: Explorer, Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार। दोस्तों, हर नया दिन अपने साथ लेकर आता है नई उम्मीदें, नई ताजगी और नए एहसास, और इन्हीं खूबसूरत पलों को और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं मौसम और संगीत का अनोखा संगम। कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको देंगे ईटानगर के मौसम का ताजा हाल। आज आसमान का मिजाज कैसा रहेगा, धूप कितनी खिली रहेगी, बादल क्या कह रहे हैं और बारिश की कोई संभावना है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी हम पहुंचाएंगे आप तक। और मौसम के इन दिलचस्प बातों के साथ साथ हम सजाएंगे आपके दिन को सुकून भरे मधुर और सदाबहार गीतों से। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के मौसम का हाल। सुबह का मौसम, आज सुबह मौसम काफी नम और सुहावना रहने वाला है। आसमान में बादलों की अच्छी मौजूदगी रहेगी और कहीं कहीं हल्की फुहारें भी देखने को मिल सकती है। तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दोपहर का हाल, दोपहर तक तापमान बढ़कर करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। हालांकि तेज धूप के बजाय बादल और धूप की लुका छुपी देखने को मिल सकती है। उमस थोड़ी महसूस हो सकती है, लेकिन मौसम पूरी तरह गर्म नहीं रहेगा। बारिश की संभावना, आज दिन भर बीच बीच में बारिश या हल्की बौछारें की संभावना बनी हुई है। खासकर दोपहर बाद और शाम के समय बादल फिर सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए छाता साथ रखना बेहतर रहेगा। शाम के समय मौसम काफी प्लीजेंट रहने की उम्मीद है। हल्की ठंडी हवा चल सकती है और यदि बारिश होती है तो तापमान गिरकर 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। और रात में आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रह सकता है। हालांकि बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी और तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज ईटानगर में मौसम का मिजाज रहेगा बादलों से घिरा हुआ, बीच बीच में बारिश की संभावना के साथ और आरामदायक तापमान वाला एक सुहाना दिन। अगर आप बाहर जाने की प्लान बना रहे हैं तो एक छाता या रेनकोट रखना जरूर। तो बढ़ते हैं इस सदाबहार कार्यक्रम में एक सदाबहार गीत के लिए। और अब बारी है कि ऐसे गीत की जो प्यार, तन्हाई और दिल की बातों को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है जिसके आने से दिल की दुनिया बदल जाती है। जो कभी काली और उदास लगता था, वही दिल प्यार के रंगों से भर उठता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों को सुरों में ढला गया है फिल्म तेरी मेहरबानिया के इस मधुर गीत में। दिल बेकरारता, जिसे अपनी सुंदर आवाजों से सजाया है सबीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने।

दोस्तों, अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार, जहां हर गीत अपने साथ लेकर आता है संगीत की वो मिठास जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाती है। और अब पेश है भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक ऐसा नायाब नगमा जिसकी शायरी, संगीत और अदेगी आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करती है। ये गीत मोहब्बत की इंतहा, समर्पण की गहराई और दिल की नजाकत को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। हर शब्द में है आदाब, हर सुर में एक कोशिश और हर एहसास में एक अलग ही जादू है।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सदाबहार कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि ईटानगर के मौसम की ताजा जानकारी और सदाबहार गीतों की मधुर प्रस्तुति ने आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाया होगा। आपके साथ बिताए गए इस सुरीले सफर हमारे लिए बेहद खास रहा। हमेशा ही की तरह आपका प्यार, आपका साथ और आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। चाह होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
4: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की

0: निर्भरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th.
9: And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26, despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
10: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है.
9: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
10: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है. भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था.
9: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city. He lauded Surat's circular water economy model and the Waste to Wealth initiative, which has turned into a mass movement over the last 12 years. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. More from our Mumbai correspondent.
11: Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. For financial year 26-27, the investment limit for central government securities has been fixed at 4,62,490 crore for the first half of the year and 4,77,006 crore for the second half. For state government securities, the corresponding limits have been set at 1,53,043 crore and 1,64,242 crore respectively. The revised directions have come into effect immediately. Ankita Apte, Akashvani News, Mumbai.
9: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product or GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Programme Implementation yesterday released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fishery sectors. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign, launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable farming practices. A report.
12: The Agriculture Ministry informed that over 17,800 awareness programs have been organized so far under the campaign. reaching nearly 6.98 lakh farmers in a

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों, उगते सूरज की सुनहरी किरणों और प्रकृति की मनमोहक छोटा के बीच आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और अगले कुछ पलों तक आपका साथ निभाएंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं टुडे इन हिस्ट्री, जहां हम जानेंगे आज के दिन इतिहास के पन्नों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हुई थी, देश दुनिया से जुड़े दिलचस्प तथ्य और साथ ही सुकून भरे मधुर गीत जो आपके दिन को और भी खुशनुमा बना देंगे। तो चाहे आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो, या फिर एक कप गर्म चाय के साथ आराम के पल बिता रहे हो, बस बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां मिलेगा ज्ञान का उजाला, इतिहास की रोचक कहानियां और संगीत का खूबसूरत सफर। तो आइए देखते हैं 6 जून को इतिहास के पन्नों में क्यों खास है। सबसे पहले भारत के नजरिए से देखते हैं। वर्ष 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। आज के दिन महान मराठा योद्धा शिवाजी का रायगढ़ किले में भव्य राज्याभिषेक हुआ था। इस अवसर पर उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई और मराठा साम्राज्य को एक नई पहचान मिली। यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। वर्ष 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार का समापन। 6 जून 1984 को भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने निर्णायक चरण में पहुंचा। यह घटना भारतीय इतिहास और राजनीति में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील अध्याय के रूप में दर्ज है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी गतिविधियां। 6 जून के दिन विभिन्न वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई राजनीतिक कार्यक्रम और सभाएं आयोजित हुई, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को मजबूत बनाने में योगदान किया। भारतीय खेल और शिक्षा जगत की उपलब्धियां। 6 जून को अलग अलग वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों ने भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की, जिनका देश के विकास में योगदान रहा। आइए रुक करते हैं विश्व इतिहास में 6 जून क्यों खास है। 1944 डी डे और नॉर्मंडी लैंडिंग। आज ही के दिन नॉर्मंडी लैंडिंग हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरी। इसे युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है। वर्ष 1943 पहली ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत। अमेरिका में दुनिया का पहला ड्राइव इन थिएटर शुरू हुआ, जहां लोग अपने कार में बैठकर फिल्में देख सकते थे। वर्ष 1968 रॉबर्ट एफ कैनेडी का निधन। अमेरिकी सेनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी का 6 जून वर्ष 1968 का निधन हो गया। 1942 इसराइल का लेबनन पर आक्रमण। 6 जून 1942 को इसराइल ने लेबनन में सैन्य अभियान शुरू किया, जिसने मध्य पूर्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। वर्ष 1523 स्वीडन बना स्वतंत्र राष्ट्र। 6 जून 1523 को स्वीडन ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। यही कारण है कि आज 6 जून को स्वीडन अपना राष्ट्र दिवस भी मनाता है। तो दोस्तों, 6 जून का दिन इतिहास में वीरता, नेतृत्व, युद्ध, स्वतंत्रता और परिवर्तन की कई महत्वपूर्ण कहानियों का गवाह रहा है। एक और छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी, तो दूसरी ओर डी डे ने विश्व इतिहास की धारा बदल दी। इतिहास हमें बताता है कि साहस, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और अब इसी प्रेरणादायक सोच के साथ लेते हैं एक खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए हेलो ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तो दोस्तों, आज 6 जून है और इस दिन भारत तथा विश्व में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। आज है वर्ल्ड फेस्ट डे, विश्व कीट नियंत्रण दिवस। हर साल 6 जून को वर्ल्ड फेस्ट डे मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। उद्देश्य है कीटों और उनसे फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। मच्छर, चूहे, मक्खी, दीमक जैसे हानिकारक कीटों के नियंत्रण के महत्व को समझाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना। और क्यों महत्वपूर्ण है? कई गंभीर बीमारियां जैसी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, प्लेग कीटों के माध्यम से फैलती है, इसलिए ये दिन का महत्व और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानकारी। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत, आवाज दी है सोनू निगम ने फिल्म दिल मांगे मोर से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2000

0: 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नेडी ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च तक शुरू की गई है। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच मल्लनपुरम नई चंडीगढ़ में महाराज यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Kurana. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world.
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Union Home Minister Amit Shah today extended greetings on the occasion of the coronation day of Chhatrapati Shivaji Maharaj. In a social media post, Mr. Shah said that Chhatrapati Shivaji Maharaj built a system of governance rooted in the ideals of self-respect, good administration and national defense, which instilled a new sense of confidence in the Indian populace. The Home Minister added that the unwavering dedication to Swaraj, Swasanskriti and Swadharm, along with the indomitable courage, transformed the young Shivaji into a Chhatrapati. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today extended greetings on the occasion of BIMSTEC Day. In a social media post, Dr. Jayashankar said that BIMSTEC is advancing shared prosperity, connectivity and resilience across the Bay of Bengal region. He added that India reaffirms its commitment to deepening collaboration with fellow BIMSTEC member states in the spirit of solidarity and mutual cooperation. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, is a regional organization which is aimed at promoting economic cooperation between countries bordering the Bay of Bengal. In Assam, the state cabinet has approved the increase in dearness allowance and dearness relief for serving state government employees and pensioners from the existing 58% to 60%. The decision was taken during the state cabinet meeting held under the chairmanship of Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sharma in Guwahati yesterday. The state cabinet also has approved the proposal for the declaration of the second state capital region area, Dibrugarh, and the constitution of the second state capital region development authority, Dibrugarh. The region will cover an area of comprising 20 kilometers radius of the Dibrugarh capital complex within Dibrugarh district. In Keralam, red alert indicating extremely high rainfall is declared in 5 districts. More on this from our correspondent.
3: Red alert indicating extremely heavy rainfall has been declared in the districts of Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasaragod in Keralam. 6 districts are under orange alert indicating isolated very heavy rainfall, while the remaining 3 districts are under yellow alert indicating isolated heavy rainfall. Intensive rainfall is expected over the next 3 days in Keralam. Places including Kannur, Kozhikode, Kochi and Alappuzha have recorded more than 15 mm of rainfall since 7 a.m. today.
1: In cricket, India will take on Afghanistan in a one-off test match at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium in New Chandigarh today. The match will begin at 9:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
4: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. हम लौटेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी गपशप के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। अरुण FM 103.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप, जहां होती है मनोरंजन जगत की हर छोटी बड़ी खबर, हर नई चर्चा और हर ट्रेंडिंग अपडेट पर दिलचस्प बातें। दोस्तों, फिल्मी दुनिया हर दिन कुछ नया लेकर आती है। कहीं किसी बड़ी फिल्म का ऐलान होता है, कहीं किसी स्टार का नया लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है, तो कहीं कोई वेब सीरीज दर्शकों के दिलों पर राज करने लगती है। और इन सब की पूरी जानकारी हम लेकर आते हैं आपके लिए बिल्कुल ताजा और दिलचस्प अंदाज में, फिल्मी गपशप में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज पर एक नजर। आमिर खान की शादी की खबरों ने मचाई हलचल। आज बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा

खान की पर्सनल लाइफ को लेकर हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान अपनी लंबे समय की साथी गौरी स्प्रत के साथ जुलाई 2024 में शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बार आ गई है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की लव स्टोरी एक बार फिर सुर्खियों में है। अब फैंस को इंतजार है कि शादी की शहनाई कब बजती है। इमरान हाशमी ने पूरी की आवारा पंतू की शूटिंग। इमरान हाशमी की फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, आवारा टू की शूटिंग आधिकारिक रूप से पूरी हो चुकी है। फिल्म 14 अगस्त 2024 को रिलीज होगी और इसमें इमरान के साथ दिशा पठानी भी नजर आएगी। तेरा मेरा रिश्ता पुराना से लेकर आज तक इमरान हाशमी की रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों का अलग ही फैन बेस रहा है। अब आवारा पंथू से उम्मीदें आसमान पर है। रणवीर सिंह की धुरंधर टू ने बनाया नया रिकॉर्ड। धुरंधर टू द रिवेंज का थिएटर रन खत्म हो चुका है और फिल्म ने भारत में लगभग 1,149 करोड़ की कमाई की, साथ ही इतिहास रच दिया है। ये हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई है। अब इसका अनकट संस्करण ओटीटी पर भी रिलीज हो चुका है। रणवीर सिंह इस समय बॉक्स ऑफिस के बादशाह बने हुए हैं। हर तरफ सिर्फ धुरंधर की चर्चा है। ओटीटी पर माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की वापसी। इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़े नामों की वापसी हुई है। माँ बहन में बाद माधुरी दीक्षित नजर आ रही है। ब्राउन के जरिए करिश्मा कपूर का ओटीटी डेब्यू हुआ है। गुल्लक का नया सीजन भी रिलीज हो चुका है। द 90s की दो सुपरस्टार अभिनेत्रियों फिर से स्क्रीन पर छाई हुई हैं। नॉस्टैल्जिया लवर्स के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। सुनते हैं के और क्षितिज तारे की आवाज में द ट्रेन फिल्म से ये बेहतरीन गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रेमी गपशप। संजना सांगी का खुलासा सिर्फ एक स्टार को देखकर होती है नर्वस। अभिनेत्री संजना सांगी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बॉलीवुड में केवल ऋतिक रोशन ही ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें देखकर वो आज भी स्टार स्ट्रक हो जाती हैं। उन्होंने ये भी याद किया कि कैसे 14 साल की उम्र में उन्होंने रॉक स्टार में काम किया था, जिसे देखकर बॉलीवुड स्टार भी घबरा जाए, वो है हमारे ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। राजकुमार राव की नई कॉमेडी फिल्म का फर्स्ट लुक वायरल। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता राजकुमार राव की आगामी कॉमेडी फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिल्म में राजकुमार एक ऐसे आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो अचानक करोड़पति बन जाता है और फिर शुरू होता है हंसी और उलझनों का सिलसिला। फैंस का कहना है कि ये फिल्म उनकी सुपरहिट कॉमिक फिल्मों की याद दिला सकती है। तो राजकुमार राव जब कॉमेडी करते हैं तो हंसी अपने आप टिकट खरीदकर थिएटर पहुंच ही जाती है। आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म को लेकर बड़ा उत्साह। आयुष्मान खुराना अपनी नई सोशल कॉमेडी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है फिल्म एक बेहद अनोखे सामाजिक विषय पर आधारित होगी, जैसा कि उनकी फिल्मों की पहचान रही है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह फिल्म 2024 के सबसे अलग फिल्मों में शामिल हो सकती है। जब आयुष्मान कोई विषय चुनते हैं तो मनोरंजन के साथ सोचने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं रावण फिल्म से ये बेहद खूबसूरत गीत विशाल ददलानी, श्रुति पाठक और एकॉन के आवाजों में।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लौटेंगे इस कार्यक्रम के शेष भाग के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोता का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ताजा ट्रेन अपडेट्स पर एक नजर। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में नया ट्रेंड, इस समय फिल्मी संगीत में रेट्रो रिवाइवल का दौर चल रहा है। पुराने गानों के रिमिक्स क्रिएशन और रिवर्जन लगातार वायरल हो रहे हैं। खासकर 90s और शुरुआती 2000s के गाने को नए धुनों के साथ पेश किया जा रहा है, तो पुराने गानों का जादू ऐसा ही है कि नई पीढ़ी भी उन्हें अपने प्लेलिस्ट का स्टार बना रही है। ओटीटी पर क्राइम थ्रिलर का दबदबा जारी। इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम और इन्वेस्टिगेशन आधारित सीरीज सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। दर्शकों को अब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सस्पेंस, ट्विस्ट और मजबूत

मुखातब कहानी भी चाहिए। इसी वजह से कई निर्माता नई क्राइम यूनिवर्स और इन्वेस्टिगेशन फ्रेंचाइज पर काम कर रहा है। तो ओटीटी की दुनिया में अब रोमांस नहीं, रहस्य और सस्पेंस की बादशाहत चल रही है। बॉलीवुड स्टार्स का इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू बढ़ा। कई बॉलीवुड सितारे अब अंतर्राष्ट्रीय फैशन, स्पोर्ट्स और लग्जरी ब्रांड्स के साथ जुड़ रहे हैं। खासकर दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और रणबीर सिंह की ग्लोबल लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इससे बॉलीवुड की पहुंच दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। अब बॉलीवुड सिर्फ भारत का नहीं बल्कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट मैप का भी बड़ा नाम बन चुका है। दोस्तों आइए इस कार्यक्रम में एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। सुनते हैं कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में अक्सर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब रुक करते हैं छोटे पर्दे की कुछ बड़ी खबरों पर एक नजर। अगर आप टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज और छोटे पर्दे की दुनिया के फैन हैं तो तैयार हो जाइए। आज हम बात करेंगे टीवी इंडस्ट्री के उन खबरों की जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने फिर साबित किया अपना जलवा। लगातार कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में जारी व्यूअरशिप रिपोर्ट के अनुसार शो ने आईपीएल और कई बड़े ओटीटी रिलीज के बीच भी शानदार प्रदर्शन किया है। शो को लाखों दर्शकों ने देखा और यह सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारतीय कंटेंट में शामिल रहा। तो गोकुल डांस सोसाइटी का जादू आज भी बरकरार है दोस्तों। जेठालाल और दया बाबी का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डांस रियलिटी शो में नए जज जोरी की एंट्री। लोकप्रिय डांस रियलिटी शो डांस जोरी डांस के नए सीजन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर सितारे प्रशांत और सिमरन इस नए सीजन में जज की भूमिका निभाएंगे। शो 13 जून से शुरू होने जा रहा है और दर्शकों में इसे लेकर उत्साह बढ़ रहा है। जब मंच पर डांस होगा और जजों की कुर्सी पर इतने बड़े सितारे बैठेंगे तो मनोरंजन का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। रियलिटी शोज का नया दौर फिर से शुरू। टीवी इंडस्ट्री में इस समय कई नए रियलिटी शो लॉन्च की तैयारी चल रही है। कास्ट चर्चा एक नई सेलिब्रिटी रियलिटी शो को लेकर है जिसमें टीवी सितारे और डिजिटल क्रिएटर्स एक साथ नजर आएंगे। टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। अब मुकाबला सिर्फ टीवी सितारों का नहीं बल्कि सोशल मीडिया स्टार्स और टीवी स्टार्स के बीच भी होने वाला है। शिल्पा शेट्टी का नया रियलिटी शो। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जल्द ही एक नए ओटीटी कुकिंग रियलिटी शो को होस्ट करती नजर आएगी। ये पहली बार होगा जब शिल्पा शेट्टी किसी ओटीटी कुकिंग प्रतियोगिता शो की मेजबानी करेंगी। शो में कई चर्चित सेलिब्रिटी भी दिखाई देंगे। तो फिटनेस क्वीन अब किचन क्वीन बनने जा रही है। दोस्तों, फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं बाग मिल्का बाग से बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है जावेद बशर ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लोई।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे की कुछ दिलचस्प लेटेस्ट न्यूज आपके लिए। फैमिली ड्रामा शोज की वापसी, टीवी चैनलों में एक बार फिर पारिवारिक कहानियों वाले शोज की मांग बढ़ रही है। प्रोडक्शन हाउस नए पारिवारिक ड्रामा रिश्तों और भावनाओं पर आधारित कहानियों पर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि दर्शक फिर से परिवार आधारित कंटेंट की ओर लौट रहे हैं। सास बहू प्यार रिश्ते और परिवार टीवी का पुराना फॉर्मूला फिर से सुपरहिट होता दिख रहा है। टीवी क्वींस की वापसी की चर्चाएं, टीवी गलियारों में चर्चा है कि कई लोकप्रिय अभिनेत्रियां जल्द नए प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी कर सकती हैं। फैंस खासकर जेनिफर विंगेट, दिव्यांका त्रिपाठी और शुरभि ज्योति के नए प्रोजेक्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। जब टीवी की क्वीन स्क्रीन पर लौटती है तो टीआरपी भी सलाम करने लगती है। इस समय टीवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी लड़ाई टीआरपी को लेकर चल रही है। कॉमेडी रियलिटी शो और फैमिली ड्रामा तीनों कैटेगरी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। चैनल्स लगातार नए ट्विस्ट और बड़े एपिसोड्स की योजना बना रहे हैं। टीवी के दुनिया में हर हफ्ते एक नया मुकाबला होता है और विजेता तय करती है जनता। दोस्तों छोटे पर्दे की दुनिया इन दिनों बड़े बदलावों से गुजर रही है। एक तरफ पुराने लोकप्रिय शो अपना दबदबा बनाए हुए हैं तो दूसरी तरफ नए रियलिटी शो और ताजा कहानियां दर्शकों को आकर्षित करने की तैयारी में है। इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि टीवी की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया और दिलचस्प होता ही रहता है। तो दोस्तों आज के लिए टीवी दुनिया से बस से इतना ही। चलिए फिल्मी गपशप कार्यक्रम में एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। सुनते हैं यमला पगला दीवाना का ये टाइटल ट्रैक जिन्हें गाया है सोनू निगम, नींदी कौर और प्यारे लाल ने।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और स्पॉटिफाई चार्ट्स पर नजर रख रहे हैं तो कुछ गाने इस समय हर जगह छाए हुए हैं। आइए जानते हैं कौन से गाने सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सबसे पहला है ऊंचा लंबा कद फॉर एवर, पार्टी एंथम ऑफ द मोमेंट। फिल्म वेलकम टू द जंगल का नया गाना ऊंचा लंबा कद फॉरएवर सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। इसमें अक्षय कुमार और दिशा पतानी नजर आ रहे हैं। ये 2007 के लोकप्रिय गाना ऊंचा लंबा कद का नया अवतार है और रिलीज होते ही डांस रील्स और पार्टी वीडियोस का पसंदीदा ट्रैक बन गया है। जिस गाने पर लोग शादी में, कॉलेज फेस्ट में और रील्स में एक साथ झूमने लगे, समझ लीजिए वो सीधा हिट लिस्ट में पहुंच चुका है। और रोमियो एल्बम के रोमांटिक ट्रैक्स, फिल्म और रोमियो के गाने युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। एल्बम में कई रोमांटिक और सूफियाना ट्रैक है जिन्हें खासकर कफल रील्स और सिनेमैटिक एडिट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर दिल प्यार के मूड में हो तो और रोमियो की प्लेलिस्ट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ब्याह करवा दो जी, वेडिंग रील्स किंग। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का गाना ब्याह करवा दो जी शादी और मेहंदी फंक्शन की रील्स में खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसकी कैची बीट और वेडिंग वाइब लोगों को खूब पसंद आ रही है। तो शादी का सीजन हो और ब्याह करवा दो जी ना बजे तो ऐसा कैसा हो सकता है। वो यूथ 40 फेवरेट, इसी फिल्म का दूसरा ट्रैक वो भी युवाओं के बीच काफी वायरल हो रहा है। जिम रील्स, फैशन एडिट्स और ट्रांजिशन वीडियोस में ये गाना खूब सुनाई दे रहा है। नाम ही वो है और रिएक्शन भी लोगों का बिल्कुल वो वाला है। आरी आरी, एक्शन मूवी फैंस की पसंद। ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर द रिवेंज का गाना आरी आरी अभी भी एक्शन एडिट्स और हीरो एंट्री रील्स में छाया हुआ है। खासकर रणवीर सिंह के फैंस इस गाने पर वीडियो बना रहे हैं। हीरो एंट्री, स्लो मोशन वॉक और पीछे आरी आरी बस फिर क्या रील वायरल। तो दोस्तों, ये था अभी का लेटेस्ट सॉन्ग्स जो ट्रेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की फिल्मी गपशप में बस इतना ही। चलिए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये अगला गीत जिसे आवाज दी है श्रेया घोषाल ने, संगीत दिया है प्रीतम, फिल्म जब वी मेट से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद हम लौटेंगे आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised directions have come into effect immediately. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that more than 9.42 lakh farmers across the country have joined the Khet Bachao Abhiyan as of June, transforming the campaign for balanced fertilizer use into a nationwide mass movement. The campaign launched by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare aims to promote balanced fertilizer application, conserve soil fertility and encourage sustainable

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे दोस्त कारग, और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम रेडियो ऑन डिमांड। दोस्तों, ये वो खास शो है जहां आपके टेक्स्ट मैसेजेस बन जाते हैं हमारे प्रोग्राम की जान। आप हमें भेजते हैं अपना नाम, अपना शहर या गाँव का नाम, अपना फेवरेट बॉलीवुड गाना, और अगर चाहें तो किसी खास दोस्त परिवार के सदस्य या स्पेशल पर्सन के लिए एक प्यारा सा डेडिकेशन भी। और फिर हम आपकी फरमाइश को पहुंचाते हैं हजारों लिसनर्स तक सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा नंबर है 9436887808। तो देर किस बात की, अपने दिल की बात और अपनी पसंद के गीत हमें टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजते रहिए और जुड़े रहिए इस सुरीली सफर के साथ। चलिए दोस्तों, अब खोलते हैं मैसेज बॉक्स और शुरू करते हैं आपके पसंद के गीतों और दिल से भेजे गए डेडिकेशन का सिलसिला। और दोस्तों, अब वक्त हो चुका है आज के पहले मैसेज का। ये प्यारा सा मैसेज भेजा है गिरन तेरोन जी ने दालोमारा कार्बी अंगलोंग असम से। गिरन जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका दिल से स्वागत है। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और 90s का सुपरहिट गीत चेहरा क्या देखते हो फिल्म सलामी से, और इस खूबसूरत गाने को अपनी मधुर आवाज दी है आशा भोसले और कुमार शानू ने। दोस्तों, ये गाना 90s के उन रोमांटिक नगमों में से है जो आज भी उतनी ही ताजगी और मिठास के साथ दिल को छू जाता है। तो गेरोन तेरोन जी, आपकी इस लाजवाब फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है एक प्यारे सी फरमाइश की। ये मैसेज भेजा है गुम्मे माई बागरा और उनकी पति ने, विलेज हिग्यू बागरा, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग, अरुणाचल प्रदेश से। आप दोनों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश एक बहुत ही रोमांटिक और मधुर 90s मेलोडी है, पिया चोरी चोरी फिल्म जान की कसम से। और इस खूबसूरत गीत को अपनी सुरीली आवाज दी है अनुराधा पौडवाल ने। दोस्तों अनुराधा जी की आवाज की मिठास और इस गीत की मेलोडी दिल को एक अलग ही सुकून देती है। तो गुम्मे माई बागरा जी और आपके पति, आपकी इस प्यारी सी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों, अब आया है अगला मैसेज। यह मैसेज हमें आया है लोकीनाथ रोंगंग नाहरलगन अरुणाचल प्रदेश से। लोकीनाथ जी, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपको दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक सुपरहिट और एवरग्रीन बॉलीवुड मेलोडी बाजीगर फिल्म का टाइटल ट्रैक है और इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। दोस्तों, ये गाना 90s के सबसे पसंदीदा रोमांटिक सॉन्ग में से एक माना जाता है जो आज भी हर जनरेशन को पसंद आता है। तो लोकीनाथ रोंगंग जी, आपकी इस लाजवाब फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों अब बारी है एक और यादगार और दिल को छू लेने वाली फरमाइश की। ये मैसेज भेजा है रोमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लक्की ने गोलाघाट असम से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है राम तेरी गंगा मेली का ये टाइटल ट्रैक, जिसे आवाज दी है सुरेश वाडकर और रविन्द्र जैन ने। दोस्तों ये गीत अपनी मधुर धुन और गहरे एहसासों की वजह से आज भी संगीत प्रेमी श्रोताओं के दिलों में एक खास जगह रखता है। तो रोमेश, रूनू और लकी जी, आपकी इस खूबसूरत फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। और दोस्तों अब वक्त हो चुका है एक और प्यारी सी फरमाइश का। ये मैसेज भेजा है अंजुली बासुमतारी ने। अंजुली जी, अरुण FM 103.1 MHz पर आपका दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक बहुत ही रोमांटिक और दिल को छू लेने वाला 90s का सुपरहिट गीत हम प्यार करने वाले फिल्म दिल से। और इस मधुर गीत को अपनी खूबसूरत आवाजों से सजाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। तो अंजलि बासुमतारा जी, आपकी इस खूबसूरत फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और यह मैसेज हमें आया है अमाल बासुमतारी जी की तरफ से। अमाल जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अमाल जी ने इस गाने को डेडिकेट किया है रोमेश, रूनू, बिमल, बाइकोन, हितेंद्र, अंजलि और कल्पना निहारिका को। इनकी पसंद है एक सुपरहिट और मस्ती वाला रोमांटिक गीत प्यार दिलों का मेला है, फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से। तो अमल बासुमतारी जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश और खूबसूरत डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन दोस्तों के नाम आपने लिए हैं, रमेश, रूनू, बिमल, बाइकोन, हितेंद्र, अंजुली, कल्पना, निहारिका, ये गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। और दोस्तों अब आया है एक बहुत ही खास और यादगार मैसेज। यह मैसेज भेजा है जोगेंद्र रोंगपी, दोरमकिरी रोंगपी और सोनाली इंटिफी ने ग्राम सरिहाजान जिला कार्बी अंगलोंग से। आप सभी को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल से नमस्कार। इनकी फरमाइश है एक एवरग्रीन और सदाबहार मेलोडी सावन का महीना पवन करे शोर फिल्म मिलन से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। दोस्तों आज का दिन भी खास है। आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 6 जून 1929 को कुर्द झेलम तब के अनडिवाइडेड इंडिया आज के पाकिस्तान में हुआ था। सुनील दत्त साहब ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी से लाखों दिलों में जगह बनाई। आज उनकी याद में ये खूबसूरत गीत सुनना वाकई एक खास एहसास है। तो जोगेंद्र रोंगपी जी, दोरमकिरी रोंगपी जी और सोनाली इंटिपी जी, आपकी इस खूबसूरत फरमाइश और सुनील दत्त साहब को याद करने के लिए बहुत

करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। हाँ।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम और अगले मैसेज की ओर। यह मैसेज हमें आया है गोपुर असम से भेजने वाले हैं सानू प्रधान जी। सानू जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है बेरन गीत को। तो सानू प्रधान जी, बेहद दुख है, आपने जो गीत हमें फरमाइश की है वो गीत इस वक्त हमारे सिस्टम में नहीं है। कोई नहीं, हम आपके लिए एक और नए गीत सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं आपके लिए आज के इस रेडियो डिमांड कार्यक्रम का अंतिम गीत। उम्मीद करता हूं आपको ये गीत जरूर पसंद आएंगे।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे दागमी नानस जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो साथी कारगर रिवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोलना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है।

पार्टी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान के साथ खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी भारत कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात। सो दोस्तों क्षमा चाहूंगा थोड़ी लेट हो गई, पर दोस्तों आज इससे पहले आप सुन रही थी हमारे आरजे नोरा को जो बनी हुई थी आपके साथ हमारी पहली प्रसारण सभा में, और अब आप सुनेंगे आपका साथ रहेगा आरजे ननास। और दोस्तों आज की सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गई रहते और तकनीकी अभियंता के नंद कुमार। तो चलिए दोस्तों आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगम नेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगम नेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानस उथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Delhi police has arrested a hotel cook named Keshav Negi in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed the lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the US Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have traveled to, transited through, or stayed in Congo, Uganda, or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business, or student permits will still be allowed to enter the country, but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the three countries within the previous 3 weeks. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today congratulated the newly appointed Foreign Minister of Slovenia, Tone Kaiser, and expressed his desire to work together. Tone Kaiser, a former diplomat with more than 30 years of experience, was officially sworn in under the newly endorsed right-wing coalition led by Prime Minister Janez Janša in Slovenia. In Andhra Pradesh, Jan Sena Party President Pavan Kalyan has announced Lingamaneni Ramesh as the party's candidate for the upcoming Rajya Sabha election. The announcement was made through an official statement issued by the party. L. Ramesh is scheduled to file his nomination papers today. According to party, Ramesh has been associated with Jan Sena and its leadership since 2015. India Meteorological Department or IMD has issued a red alert for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Keralam and Mahi today. Heavy to very heavy rainfall conditions are also expected over parts of northeast India, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. Similar conditions have been predicted over sub-Himalayan West Bengal, Telangana, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Rayalaseema, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. The weather agency predicted a thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. Indian wicketkeeper and batter K.S. Bharat has announced his retirement from international cricket. He represented India at test level on 7 occasions, with his last appearance coming against England at Vishakhapatnam in February 2024. India will face Bangladesh in the final of the SAF Football Women's Championship at Madgaon in Goa today. The match will be held at 6:30 p.m. onwards. And in hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. Earlier, India beat its arch rival Pakistan 5-3 in the second semi-final in a high-scoring contest. And that is the end of this news bulletin.
4: G सो दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए दोस्तों हम आपको सुनाते हैं अब कार्यक्रम यादों की बारात में कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स।

0: वक्त की रेत पर यादों के दिए जलाए बैठे हैं, कुछ हसीन गीत कुछ पुराने किस्से दिल से लगाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की बारात में। एक ऐसा दिन जहाँ हम और आप मिलकर समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। वो जमाना जब दोस्ती सच्ची होती थी, कांतों में जज्बात थे और हर गाने में एक कहानी होती थी। आपके चेहरे पर वही पुरानी प्यारी सी मुस्कान लाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। एंड ऑल द सीनियर सिटीजंस आउट देयर, आप बस अपनी आराम कुर्सी पर बैठिए, एक गरम चाय की प्याली लीजिए और खो जाइए इस हसीन दौर में। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो का एक बेहतरीन नगमे के साथ, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म हम दोनों से, जो बनी थी 1961 को। इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में आप देखेंगे देवानंद और साधना को। आइए शुरू करते हैं और लीजिए पैसे ये बेहतरीन नगमा आप सबके लिए। Only on Arun FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

भेजिए दोस्तों अगला गाना पेश है आप सबके लिए दिल अपना और प्रीत पराए फिल्म से जो बनी थी 1960 को. जी हाँ दोस्तों ये गीत है उस फिल्म का आइकॉनिक सॉन्ग अजीब दास्तां है ये जिसे गाया है लता मंगेशकर ने ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहाँ होती है दिल से दिल की बात.

Aglaye Geet, and this song is also one of my favorite song of Mohammad Rafi. जी हाँ दोस्तों, इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने. ये गीत है चौदहवी का चांद. लीजिए एंजॉय कीजिए ये गाना, ये सॉन्ग. मैं लौट कर आया, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहाँ होती है दिल से दिल की बात.

श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत माला में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए आइए दोस्तों, सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत फ्रॉम द फिल्म बाग मिल्खा बाग। इस गीत का नाम भी है बाग मिल्खा बाग। लीजिए फिर से ये बेहतरीन गाना एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: तो श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गीत माला। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब श्रोता दोस्तों, अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर पर हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे, यानी अब से शुरू होगा हमारा संगीत में सफर, हिंदी क्लासिक म्यूजिक।

गुजरा हुआ जमाना जाता नहीं है दिल से, चलो आज फिर मिलते हैं उन्हीं सुनहरी यादों की महफिल से। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। अगले कुछ पलों के लिए हम जाएंगे 60s, 70s और 80s का वो आइकॉनिक दौर, जहां दोस्तों हर धुन में एक जादू था। रफी साहब की दीवानगी, किशोर दा की मस्ती और आशा ताई की वो खनकती आवाज। चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या घर पे रिलैक्स कर रहे हो, आज का प्लेलिस्ट आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि रेट्रो का सिलसिला शुरू होता है अब। दोस्तों आइए सुनते हैं इस शो का पहला गीत, आप जैसा कोई, जिसे गाया है नाजिया हसन ने। फिल्म कुर्बानी का ये बेहतरीन गीत पेश है आप सबके लिए, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0-litre dual-jet, dual-vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to Rs. 52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, मोहब्बत की राहों में जब कोई हसीन मोड़ आता है तो ये मौसम भी गुनगुनाना कर यादों को जगाता है। दोस्तों, मौसम चाहे जो भी हो, पर जब मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू फिजाओं में घुलता है तो हर लम्हा थम सा जाता है। आज हम आपको ले चल रहे हैं बहारों के बीच, हसीन वादियों के शहर पर। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, इस ठंडी हवा को महसूस कीजिए और खो जाइए फिल्म आज और कल के इस बेहद खूबसूरत नगमे में। सुनिए ये वादियां, ये फिजाएं, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात. चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर. अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, यानी चालू रहेगा हमारा संगीत में सफर.

श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर

0: और में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं।

0: के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र रायलसीमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
1: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़ ओलावृष्टि वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए करते हैं शुरुआत हमारे संगीत में सफर को, और आइए सुनते हैं इस संगीत में सफर में कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

वो केसेस का जमाना, वो दोस्तों का बहाना, चलो फिर से जिए 90s का वो सुनहरा फसाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। एक ऐसा दौर जहां हर गाने के पीछे एक हार्ट ब्रेक था। हर ऑटो रिक्शा में कुमार सानू बजते थे और वॉकमैन पर आलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज हमारी दुनिया बदल देती थी। तो अगर आप भी उस 90s किड वाले जोन में वापस जाना चाहते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आज की इस शाम हम लौट रहे हैं उस मस्ती और ढेर सारे प्यार के दौर में। लेट्स रिवाइंड एंड प्ले द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 90s राइट नाउ।

और लीजिए दोस्तों, पेश है अगला गीत फिल्म जोश का, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत का नाम है हाय रे मेरा दिल, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1।

0: are strictly banned within the Itanagar capital region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the district grievances redressal cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजी ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, आइए सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन गाना फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं से। इस गीत का नाम है कसम की कसम। आइए लीजिए ये बेहतरीन सॉन्ग, ये बेहतरीन नगमा आप सबके लिए।

नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वीएफसीपा सिसेपसी चमसी मीटर होपा चिसेभा किलो हस में मुचलांग खमते खमती हो को मा हो मने वन चने लानी पीटे सोहिंग पा साउ तो इंगनाजी पीमु सोहिंग साउ हो नुन जुन नै हो वन नम हो वती कुन सिंग कुन मुंग तंगलाई मो सुम नम खाम मने हने थोम खाता Defense Minister Rajnath Singh

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताई कांती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब श्रोता दोस्तों अब समय है उसका जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ दोस्तों अब शुरू होगा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स।

श्रोता दोस्तों अपनी कुर्सी की फेटी बांध लीजिए क्योंकि बॉलीवुड के बी टाउन से गर्मा गर्म खबरों की फ्लाइट लैंड हो चुकी है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका अपना होस्ट आरजे ननास लेकर हाजिर है बी टाउन की दुनिया से कुछ ताजा तरीन और मसालेदार खबरें इस शो पे। फिल्मों की दुनिया है हसीन, यहाँ हर रोज बदलती है तकदीर। चलो देखते हैं किसकी चमकी किस्मत और किसकी बिगड़ी तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी अपने पीक पर है और हमारे बॉलीवुड का टेम्परेचर तो मल्टीप्लेक्स को ही जलाने पर तुला है। सो अगले कुछ पलों के लिए मेरे साथ बने रहिए क्योंकि मेरे पास है एक्सक्लूसिव बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और वो फीकी गॉसिप जो आप सुनना चाहते हैं। वेलकम टू द शो बॉलीवुड अपडेट्स।

आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े महामुकाबले की। ट्रेड एक्सपर्ट्स पहले ही कह रहे थे कि जून 2026 में रुपीस 1400 करोड़ से ज्यादा दाव पर लगा है, क्योंकि 9 बड़ी फिल्में आ रही हैं और इस फ्राइडे को तो धमाका हो गया। एक तरफ थे हमारे वरुण धवन अपनी पापा डेविड धवन की मैसी रोम कॉम है जवानी तो इश्क होना है के साथ, देवन के अर्ली एस्टिमेट आज

चुके हैं दोस्तों। फिल्म ने लगभग रुपीज 7.5 करोड़ टू 11 करोड़ के बीच की सॉलिड ओपनिंग ली है। कुछ लोग इसे क्रिंज बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि वरुण पाजी ने मस्त एंटरटेन दिया है, पर ट्विस्ट पता है क्या दोस्तों? इसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हैं अनुराग केशव और बॉबी देओल अपनी फिल्म बंदर के साथ। क्रिटिक्स तो अपने इस अनुराग केशव की बेस्ट फिल्म कह रहे हैं इसे पिछले कुछ सालों में, पर बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग सिर्फ रुपीज 50 लाख की हुई है। क्वालिटी टॉप नॉच है, पर क्या पब्लिक थिएटर्स तक जाएगी ये देखना बाकी है।

एंड दोस्तों वेलकम बैक टू द बॉलीवुड अपडेट्स. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खबर की तरफ. दोस्तों हमारे परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने आखिरकार कंफर्म कर दिया है कि यस द न्यूज वाज ट्रू. वो इस साल जुलाई 5 को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रत के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. 2026 की सबसे बड़ी बॉलीवुड वेडिंग्स होने वाली है ये, और पूरी इंडस्ट्री अभी से तैयारियों में लगी हुई है. कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कपल. वहीं दूसरी तरफ ग्रीक गोत ऋतिक रोशन थोड़े से परेशान लग रहे हैं. उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां उन्होंने कहा है कि वो इस गुड गाय वाले इमेज को और रोल से थोड़ा थक चुके हैं. उन्हें अब कुछ ग्रे, कुछ नेगेटिव यानी जफर लाइक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करना है. इंटरनेट पर तो अभी से ही अफवाह शुरू हो गई है कि यह क्या काटी, क्या ऋतिक खुद को डोन 3 के लिए पिच कर रहे हैं. पता नहीं बॉस, पर ऋतिक को विलन बनते देखना बड़ा मजेदार होगा. तो दोस्तों ये थी आज की गर्मा गर्म ताजा तरीन और मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स. अगले हफ्ते दोस्तों इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा और मनोज बाजपेयी की गवर्नर भी आ रही है, तो बॉक्स ऑफिस पर तो रोना धोना और धमाल चलता रहेगा. अभी के लिए मैं लेता हूँ विदा, पर आप सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब इसके बाद आप सुनेंगे वांछित श्रोताओं का समाचार, लेकिन फिर शुरू होगा हमारा संगीतमय सफर.

I know now some master bubama volunteers butola achok levan kema panyem bu rangpong to tampong lan lan le chichang le ma tan tan ma kai thom ngang le ngong ka mot la ka le che ani kai ke pan phai ma rangwen rahan mai le ngong ke mot to hai levan ka boma len ke rangban ani ba ma prime minister narendra modi ma apa ke khama rangwen rahan hi ya phau sui achan le ajit le थामंग पाक माइलोवेटिक लिंग होता है पुलवन ले अरुणाचल प्रदेश अंके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ए लेन के बुस्पुति बी साइंटिफिक सतमोत्तो तमोक टेक्नोलॉजी अले अटाइ के बोमा हॉर्टिकल्चर मोट लंपन अमेक रोंगमा ले पालमपुर हिमाचल प्रदेश तो के सी एस आई आर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी सी एस आई आर आई एच बी टी पाई एमओ यू लाइट तो टिपिंग का फन ले हाले हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसू या सेक्रेटरी कॉस रिन्या नी पमथोमा हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर तोबम बम बोमा सीएसआईआर आईएचबीटी डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार यादव नी बाम हले हायमा मिनिस्टर वांगसू ए हाले आसाम ले खटखा के एक्शन प्लान रिंग ले मोक्सा के खामा माइके मोटो ना हाय हाय लेवन ले हले माइ पों वन रौ ता सा हिंग खा फाउ सुई फुम सा सुई सा हिंग हाय रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग बोमा हॉर्टिकल्चरल मोट लंपन अमय अंक मोट ले तोले मोकाई अरुणाचल प्रदेश अंके कल्चरल हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी बोमा चिलीली आइडेंटिटी बामा ले पोस्टेस स्टाम्स बु रिंगाई ले तुंके खोमा गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टीपर नायक ए हले टूंग मईपू ला चौकले हायाबामा नॉर्थ ईस्ट सर्कल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ब्राजेश कुमार फाई लेन के बुसुतिबा नि शिलोंग तो अरोले हाया खामा टिंगजिंग हाजिंग खनक नुमोट लम सतलम हेरिटेज होनुबु फाउसुई हिया मैन्या जीआई टेक होली बोमा रिंगजाउ बुबामा ले रिंगाई एंटी ड्रग ऑपरेशंस खामा ऑथोरिटी से लेन के जून अली तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट तो बालेमु मा टोकंगा कलीबु मुनमथत कोले बनली करोर लाखपुनी बन आगा था जातनी होकू बंटा त्वाक जाऊ पाल कपले हले वेस्ट कामेंग पुलिस ए बमडिला अंके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ए तम के तेमा होमफाई के एजेंसीस बुफे आसाम ले लम ले टिकटोले लमला तकले हाया खम होम मिनिस्टर मामा नाटुंगे खपक से बुबोमा दुनु अंके खनक नुखो ले हलके होली हले लमले आवाज को लेती से संतवाके वे लेवन ले चे गवर्नमेंट चिमा खंगे अरुणाचल प्रदेश ड्रग फ्री बोमचु माइके चाबान आंग नाचंग ले अरोंग लंगो पुलिस वन ले इलेक्शन मा तेम होता यों या चिताई ले मोकम ना मै ले मनी बॉम दिला तो डिसिस ऑफिस मा Electoral Rolls 2026 Hanpakma Special Intensive Revision SIR Bama Training Program Mangotle Hayama EROs AEROs BLO Supervisors BLOs Antole Election Department Officials Samle Hakle Hayama Deputy District Election Officer Rinchin Leta A Accurate Electoral Rolls Bama Khatlevan Kaboma ऑफिशियल्स बुफाई फिल वेरिफिकेशन मोटो खनल मैलमोक बखैला काले हले एसआईआर वानलम हेया इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सतमोन बुबामा टेक्निकल मोटसत बामा अरुणाचल प्रदेश सीईओस ऑफिस ईटानगर अंके सौगाटा मैटी ए अपोनोल कोले हाबोमा ऑपरेशन सद्भावना खामा सीगा मिलिट्री स्टेशन ए अतु जाके वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नि ओपन एयर जिम्नेजियम मंचोंग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के नमसिंग तिंखोंगे कपले हाया प्रोग्राम मेबो एमएलए ओकेन टाइंग सीगा अंक मिलिट्री स्टेशन कमांडर वाइल्ड लाइफ वार्डन तालुत सीराम तिंखोलम पाबू मिरे ताइचोंगबू बोमा स्कूल लाइन ऑन नौसम लाखले हाजा जिम मा हाखा तोकाय खनक नु चांगचा माइलेना ngo ले फिटनेस इक्विपमेंट होलिंग होकन बुचु बंटा जो तैले अनि कका हो इवाय इजा आकाशवाणी ईटानगर का हो फेमा

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। आइए शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।

और श्रोता दोस्तों, इसी सर गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुनेंगे अगले कुछ पलों में अब इदुमिसनी श्रोताओं का समाचार, लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कुछ संगीत में प्रोग्राम।

0: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची एहरो मानोलिनी एतानिची इदुमिस्मी आहोलाकेजी दरगालंबो इंडिया माचे इदियावा जो है लिबाचा हुलेनिनुमा प्रांबा छिगा जोनेगाजी नेम जीडीपीबु इउपॉइंट इउमा खागादाने डिफेंस राजनाथ सिंह में लगाने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में इंडिया है इजी रूमिदुमिंगा प्रांबान जोनेगादा लगादा आहोगा अरुणाचल प्रदेश बीजेपी में बुनी ईटानगर चिंपुआटिको ने नान्यामुमा ने आशीर्वाद लिवे प्रोग्राम अखाने का मा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू बीजेपी वर्कर लंब्रो आजो आहिया आजो आहितोया दो ने वॉलेंटियर मो लंब्रो में आशीर्वाद ता निगाह बता आहोगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लाने का मने एतानी आशीर्वाद निया में अनाया अधिकारी अमोराजू प्रा आखाओमा आर औषधा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में लाइबा आहोगा चौपहिया नंबर में आतिपाही है प्राण बुए अरुणगा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टी पारनायक में बुनी निगा शिलोंग मने असम राइफल्स मचे डायरेक्टर जनरल आजा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा गो चौब महो लाइबा आहोगा इंडिया म्यांमार आतिपाही है प्राण ठोबुए अरुणगा ने गवर्नर में लगाने एचहन लिपा है आयोग अंदागा आजो याबुदा लामी असम रेफोर्स मचे चपहिया नंबर में प्रम्रा आतीबुगा अथुजीदा लाइबदा आहोगा साइंटिफिक आजोचे अपित्याईता जनमेगा उदा लाने अरुणाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बुनिनिगा हिमाचल प्रदेश पलमपुर आतीकोचे सी एस आई आर आई एच बी टी गो एम ओ यू अम्रवा तिगा बदा आहोगा आई एम ओ यू अम्रवा तिगा मा सी एस आई आर एच बी टी डायरेक्टर डॉक्टर सुदेश कुमार यादव ने अरुणाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर तबम बामे अतानिगा बमह आदुमा अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मिनिस्टर गब्रियल टी वांगसु ने हॉर्टिकल्चर सेक्रेटरी कोच रिनिया बदा आहोगा अली अम्रवा तिगा लामा ने जोप्रा योबा एचिचे ने मिनिस्टर में ला बमह अम्रवा तिगा कोकोमा ने आसपीमा आमनी हाथुमुदने असिनतामा अपितेवे रिसर्च अजथुवे एदोने हाथुमु आमयवचिपुआ जंबेगाउदा लाहोगा अरुणाचल प्रदेश अतिगाची आतोचेदो जीआई दोने किसा टीएचुचिपुआ लाताचिगने इंडिया पोस्ट में स्टाम्प अजप्रा आयोवे लगाचा है प्रम्रबिदाने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक में बुनी निगा शिलोंग मने हय तातिका चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ब्रजेश कुमार गो चौगा बमह लगाने अली पोस्टल स्टाम्प आयो लगा मा अरुणाचल प्रदेश मचि आसिपियासिना थीरा ख्या प्रगाचा है प्रभुदा लगादा आहोगा अली आयोग मने अरुणाचल प्रदेश मचि ट्राइबल इमु में बहाने इनगा जानदो बुजिगा प्रभुदा ने गवर्नर में लाओगादा आहोगा वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट मचे पुलिस में बोमदिला सीजीएम कोर्ट से को बताने बुनी निगा बालीमुआते को ने होलोमा करूबुशी पाउरे रु एरतेला एजर कासो किजीबुशी आयमुगा ड्रग फिपोगला दा लाहोगा वेस्ट कामिंग पुलिस में अलीगा आयमुगा ड्रग आतोगे ने अतिका मने आयमुगा ड्रग जोयाबा एगा मने अब इनिगे अरुणाचल प्रदेश मने आयमुगा ड्रग नबा अनिचिगा सदा ने होम मिनिस्टर ममना तुम्मे लगादा आहोगा पुनी तवांग अतिकोची डिश ऑफिस मने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर चिपो ट्रेनिंग आहिगा मा इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ई आर ओ असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ए ई आर ओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर बी एल ओ सुपरवाइजर दोने इलेक्शन डिपार्टमेंट मा चिकित्सा अजबापो नंबर में आहितो बदा आहोगा अतिकाची बोर्ड आजपो है जिला का दंगा प्रा अखाजी चेन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रिंचिन लेता में लगा बमहो ईटानगर चीफ इलेक्ट्रल ऑफिस माचे सौगता मेहती में आ ट्रेनिंग आहे बदा आहोगा ऑपरेशन सद बोना को माने ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट सिगार मिलिट्री स्टेशन माचे इंडियन आर्मी में ओपन एयर जेम आज तेगा बचे बुनी अमोरा पहुंचे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इन नगा मचनी आयोग बदा आहोगा मेबो एमएलए ओकिंग टैंग Sigar Military Station Machi Army Azaheta Wildlife Warden Talut Siram Gaubra Lambro Azaheta Adone Antikochi Mu Kome A Program Ma Gigabada Lahoga Aji Mahen Holoke Tarnawa Machine Kagada Lahoga Etanichi Idmishmi Aho Lima on Dubai Echa Akaswani Itanagar Dugornali Idmishmi Program Ma Etanyahe Erati Melome Mibishi Negachi Arji
1: तो दोस्तों आप सुन रहे थे इदुम इसमें श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे और इस कार्यक्रम को इदुम इसमें कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा एक और बार संगीत में सफर हिंदी फिल्म।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तंगसा श्रोताओं का समाचार। और दोस्तों, अब स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 4:17, यानी मेरे अलविदा करने का वक्त। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबके चहेते, आप सबका मन पसंदीदा आरजे मंजू पामो, जो बनी रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। दोस्तों, आई होप कि इस शो में, इस सभा में बजे सारे कार्यक्रम आप सबने काफी ज्यादा एंजॉय किया है। इसी तरह के ढेर सारे कार्यक्रम सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, मैं बता दूं आप सभी को, आज के सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गई रहते और तकनीकी अभियंता के नंद कुमार। तो अब मुझे, यानी आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नाराज को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मचोरंगिया रुगनांग रुकोहांग वासिम केंगलांग र बड़ी बैमुंग ताम पन इकोनॉमी काओ अहुजामु कजांग रनांग इंडिया पर मुंकांग नंग वर्ल्ड नंग फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कजांग डाक मुराउ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फान तो पांग जने जो खुरा बंगा खुरा करोक पांग फाइनेंशियल पांग नंग जीडीपी ग्रोथ रेट सनत पॉइंट सनत परसेंट जांग तो कमुंग नंग फान रहो कचे पांग सर ने तुंग नंग इंडियन इकोनॉमी अहेंग तक जांग रहो खाम जीडीपी ग्रोथ पर सनत पॉइंट सनत परसेंट नंग थोक तुंग उराउ डिफेंस मिनिस्टर फान तो अराउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप अंडर म इंडिया नंग इकोनॉमिक ग्रोथ कयांग रो कमुंग नंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रो फांत अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक रो मचो जिलिंग रंग ब्लै तरीक चिरजु शिलोंग नंग असम राइफल वंग डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखेरा म रहम द परजु गवर्नर के टी पटनायक रो इंटरनेशनल बॉर्डर नंग विजिलेंस नई ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस पर सहंग म रोक द सिक्योरिटी चैलेंजेस हन र कमुंगनांग रोराउ ट्रूप्स हेंग प नरी कचो पाइ तोंगरांग अराउ बॉर्डर नंग फेंसिंग रो नुंग कम प सहंग म रोराउ परप नेशनल सिक्योरिटी म अरेंग ताइरंगो रोक द परम असम राइफल र इंडो म्यांमार बॉर्डर प वोंगकांग र परम फ्रंटियर एरिया नंग हांती लामबानंग उराउ गवर्नर र फांत परम सिविक एक्शन नई आउटरीच प्रोग्राम मन तगियांग रंगो श्रीलंका रो पर लोकल कम्युनिटी जाम म रहोम प सेंग र अरो रिमोट रीजन नंग डेवलपमेंट म करुम कुर मोरो स्टेट वंग गवर्नर केती पटनायक र फांत अरुणाचल प्रदेश बीजेपी र मचोसा चिंपू वंग गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नंग एक पेर मा के नाम पुफो खाई प्रोग्राम तगियांग तनांग चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिप्टी चीफ मिनिस्टर नई बलांग डिग्निटरीज मेहिंग टोंथोक तुम रोक परजू लोकल रेसिडेंट मेहिंग

प्रोग्राम्स तामनाङ नै पोलिसिस तामनाङ रखाइर प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी र डेभलपमेन्ट प सिङमुङ वाङ बडो मै फाङनाङ तथोकम तानरो कचै पाङस नै मसो डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्स नै वेलफेयर स्किम्स ताम कमुङनाङ तकमुङ र सिङमुङ वाङ मै यम डाइरेक्ट रम्पोङ र नाङमुङ र सदिन लाप्तम पाङ सनसै थोनाम सो आताङनाङ अरुणाचल प्रदेश केपिटल ईटानगर नांग जहाज थामचंग एयरपोर्ट पर अचे है जंग परिचोक नांग स्टेट वंग मई पर हाफई नांग जहाज म काट म असम नांग लीलाबरी हा नांग नई गौहाटी नांग कारंग कयंग स्टेट वंग मई म अरेंग रात स्टेट फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जंग दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर पर प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी र पाङ हजनेरा खर्नै पाङनाङ नोभेम्बर जिलिङ राङसाइतकौ तारिकसा खुली त आरो प्राइम मिनिस्टर मोदी र इरो एयरपोर्ट मङरौ फाउन्डेसन लोङप पाङ हजनेरा सतकौ पाङ फेब्रुअर जिलिङ राङतकौ तारिक नाङ सोङ त हैम प्राइम मिनिस्टर्स अफिस पीएमओ र एयरपोर्ट मानकाम्प अलिङ राइरौ खाम दोनी पोलो एयरपोर्ट प होमय नाङ तचै रक्त दोनी पोलो एयरपोर्ट नंग अन्या नई पार्मेनेंट टर्मिनल बिल्डिंग हब नंग पार हावर नंग रचमचेत अपार पैसेंजर मई तोंगंग रपर म अपांग नंग फांगलांग लाक्सर बंगा आताक पैसेंजर मई तोंगंग र इर टर्मिनल प हजत बलेरा रचासिरा स्क्वायर मीटर हाहोंग नंग मानत इर टर्मिनल हब मोंग नंग कैफीस नई चिल्ड्रेन प्ले एरिया जगारा

खयुंग मंत अर मचौ लोकल मईर तेजु एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वंग नई पासघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वंगरा जीरो लैंडिंग ग्राउंड तामनांग सिविलियन एयरक्राफ्ट सर्विसेस वंग नई कमर्शियल एयरक्राफ्ट सर्विसेस वंग होबिदा प लाब्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प सचा खा म ट्रेन कौलाम म नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ताम कैपिटल प नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली जाम राथान र अरो प्राइम मिनिस्टर मोदी र ट्रेन लाम प तचेन म तानर थलिंग पांग हजन नेरा सरबंगा पांग नंग फेब्रुवारी जिलिंग रंखू तारीख सा अरुणाचल प्रदेश नंग नाहरलगुन हा नई दिल्ली तुंग नंग नाहरलगुन न्यू दिल्ली एसी एक्सप्रेस फर्स्ट ट्रेन पर तफंग रौरे मचौ ट्रेन पर नाहरलगुन रेलवे स्टेशन म गावती नंग नई तुंसकिया नंग कार नंग म आरो नंगमुंग वपम नंग बलिबाई सिटी स्टाम नंग दोपसो कार परतुम नंग आसाम नंग मोरकोंग सिलेक हा म अरुणाचल प्रदेश वंग ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट नंग सिले हा अता अन्या रेलवे लाइन नंग ट्रेन पर माइताई थयो तसो आरो मोरकोंग सिलेक नई पासघाट तुंग रेल प्रोजेक्ट काम प जालाउ म सो तचे सिंगो रतुंग र परजु अचोंग सुरकरी र बॉर्डर हाताम प गारी लाम म तथान म आरेंग सताई र थलिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी र पांग हाजनिरा खबले पांग नंग मार्च जिलिंग रांतकाउ तरिक्सा अरुणाचल प्रदेश नंग सिला टनल प खुली त हजारोम अपार फिट छो नंग मानत बाइलेन टनल प मुंकांग नंग आलू पिंथुम टनल लाम जांग र इरे लाम नंग टेम्परेचर प अललाक नंग माइनस 20 डिग्री सेल्सियस अता कोम रौरे गारी वंग पेट्रोल ने डीजल तेल कथांग वन र नंग नरी हान र ऑल वेदर सिला टनल र गावती नंग इंडियन आर्मी यूनिट तोंगरो बन नई तावंग हा नंग आर्मी तोंगरो बन तुंग नंग मचो रंपोंग प अचो सो तयांग र परतुंग नंग वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट नंग मुंग म आरिंग टनल जंग र नेचिपु टनल प पांग हजनिरा खरुम पांग नंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह र खुली त इर टनल लाम प बालीपारा चार द्वार तावंग बी सी टी लामलिंग नंग नेचिपु पास को नंग जंग र आरो हजार बंगारा चस्नेट फिट चू नंग मंत लाम प हजार बंगा मेटर चा डी सेप नई सिंगल ट्यूब डबल ट्यूब

0: नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर डायलेक्ट न्यूज के माफ कीजिएगा श्रोता तांसा डायलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अरुण एफएम प्रसारण सभा में। वेल, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:31 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारे आज की तीसरी प्रसारण सभा। और हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर नानाश जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूं कि आपका ये शाम बहुत ही खूबसूरत बीते। श्रोता, ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद हैं प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता पीबी देवरी और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे, मतलब भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। जी हाँ, आज अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं तो आपका भविष्य जरूर सुंदर होगा, उज्जवल होगा। चलिए श्रोता, इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और जारी रखते हैं मनोरंजन के इस सिलसिले को, लिए चलते हैं आपको हमारे पहले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार बातें जरूर होंगी आपके साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें जरूर होंगी और साथ ही साथ पेश करेंगे आपके लिए आपका ही पसंदीदा गीत। वेल दोस्तों, आज का दिन अगर आप देखें तो बहुत गर्मी है। हाँ, बारिश भी हुई थी लेकिन गर्मी भी उतनी ही ज्यादा है। और ऐसे मौसम में दोस्तों, हर थोड़े अंतराल के बाद पानी पिया कीजिए। और पानी की बात जब हम कर ही रहे हैं तो चलिए आज बातें करते हैं बाजार में मिलने वाली पानी की बोतलों के ढक्कन के बारे में। जी हाँ, पानी की बोतल के ढक्कन का रंग केवल सजावट के लिए नहीं होता है, बल्कि कई बार यह पानी के प्रकार, कंपनी की पहचान, उपयोग या पैकेजिंग की जानकारी भी देता है। हालांकि सभी कंपनियों के लिए कोई सामान्य नियम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम बोतलों के ढक्कनों के बारे में बात करें तो हर रंग पानी के बोतल का कुछ ढक्कनों का कुछ कहता है। नीला रंग बहुत कॉमन है दोस्तों। नीला रंग यानी कि ब्लू कैप अगर बोतल में दिखते हैं तो नीला रंग सबसे सामान्य माना जाता है। यह आमतौर पर साधारण पीने के पानी या फिर मिनरल वाटर को दर्शाता है। कई कंपनियां शुद्ध और सुरक्षित पानी का प्रतीक दिखाने के लिए नीले रंग का उपयोग करती है, क्योंकि यह पानी और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। और फिर अगर आप ग्रीन कैप वाले ढक्कन वाले बोतल खरीदते हैं तो हरा रंग अक्सर नेचुरल मिनरल वाटर का वाटर या पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंपनियां पहाड़ी झरनों या प्राकृतिक स्रोतों के पानी को दिखाने के लिए हरे रंग का उपयोग करते हैं। और फिर व्हाइट कैप भी होता है दोस्तों, सफेद ढक्कन शुद्धता यानी कि प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। यह अक्सर फिल्टर किए हुए या आरओ के साफ पानी को दर्शाता है। सफेद रंग स्वच्छता और साफ सफाई को दर्शाता है। तो सफेद जो रंग होता है पानी के बोतल के ढक्कन का, तो वो दर्शाता है कि यह फिल्टर किया हुआ यानी कि आरओ का पानी है। तो इसी तरह के और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी आपको इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए फटाफट आपको लिए चलते हैं इस गीत की ओर, जिसे हमने लिया है सुपरहिट मूवी आर आर आर से।

तो दोस्तों, आपने सुना इस गीत को राग पटेल की आवाज में सुपरहिट मूवी RRR से। तो आज हम दोस्तों इस कार्यक्रम के दौरान बात कर रहे हैं बोतलों के ढक्कन के कलर्स के बारे में। जी हाँ, पानी के बोतल जो आप बाजार से खरीदते हैं और उस पे जो ढक्कन का जो कलर होता है उसका क्या मतलब होता है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी बहुत कम देखा गया है कि कुछ बोतलों के ढक्कन का रंग काला भी होता है। काले रंग के ढक्कन प्रीमियम या महंगी पैकेजिंग वाली बोतलों में दिखाई देते हैं। कई बार यह विशेष मिनरल वाटर या ब्रांड उत्पादों में उपयोग किया जाता है ताकि बोतल आकर्षक और बिल्कुल अलग दिखे। और फिर कभी कभी लाल रंग या ऑरेंज केप वाले बोतल भी होते हैं। ये रंग अक्सर फ्लेवरफुल वाले पानी का होता है, एनर्जी ड्रिंक या विशेष लिक्विड पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता है। लाल रंग ध्यान आकर्षित भी करता है और साथ ही साथ ये उस बोतल का जो पानी है उसमें अलग अलग फ्लेवर ऐड किया जाता है। और फिर पीला यानी कि येलो कैप, कुछ कंपनियां पीले रंग का उपयोग विटामिन युक्त पानी या विशेष लिक्विड के लिए करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप येलो कैप वाले पानी बोतल खरीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पानी में कुछ विटामिन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह रंग ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक माना जाता है और बहुत कम ही देखा जाता है दोस्तों पिंक या पर्पल कैप वाले। यह रंग अधिकतर विशेष फ्लेवर यानी कि बच्चों के लिए तैयार किया जाता है और डिजाइन कुछ इस प्रकार होता है कि ये बच्चों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बोतलों के कलर्स के, बोतलों के ढक्कन के कलर्स के बारे में। जब भी आप बाजार से पानी खरीदते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपने किस कलर का ढक्कन वाला पानी खरीदा है, बोतल खरीदा है। तो आज के इस जानकारी से अंदाजा आपको हो ही गया होगा कि हर बोतल के ढक्कन यानी कि कैप का रंग कुछ जरूर बताता है उस पानी के बारे में। तो फिलहाल चलिए और आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, जिसे हमने लिया है ओ माई गॉड टू फिल्म से।

0: दोस्तों आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का ओ माई गॉड टू फिल्म से। दोस्तों पानी की बोतल आप कोई सा भी खरीदे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बोतल की सील अच्छी तरह से बंद होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट और सीमित डेट यानी कि एक्सपायरी डेट भी जरूर देखें। बोतल पर ISI या फिर FSSI का मार्क अवश्य देखें। टूटी पिचकी या धूप में लंबे समय तक रखी हुई बोतलों का उपयोग ना करें तो ठीक रहेगा। इसी के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से CSIR IHBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई, और फ्रेश अरियर सूर्य कुमार यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष में भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमन में कल लगभग 2,977 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टायट KT पारनाइक ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और परिचालन तैयारियों को और सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने शिलांग में असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा के साथ बैठक में के दौरान ये बात कही। राज्यपाल ने बदलती सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जवानों को हर समय सतर्क रहने पर बल दिया तथा सीमा बाड़बंदी कार्य को तेजी में लाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्र सुरक्षा और प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में असम राइफल्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ संबंध मजबूत करने और दूरदराज क्षेत्रों के विकास में योगदान देने वाले असम राइफल्स के नागरिक कल्याण एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू एवं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश द्वारा चिंपू स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वृक्षारोपण केवल साल में एक बार होने वाली गतिविधि नहीं बल्कि जीवन भर का मिशन बनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आज लगाया गया प्रत्येक पेड़ स्वच्छ हवा, स्वर्ण पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह अभियान विकास और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। अरुणाचल प्रदेश के बागवानी विभाग ने वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सतत बागवानी विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR IHBT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर बागवानी निदेशक तोबोम बाम और CSIR IHBT के निदेशक सुदेश कुमार यादव ने अरुणाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री गैब्रियल दिवांगसू और सचिव कोच रिंगिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। श्री वांगसू ने कहा है कि साझेदारी से समयबद्ध कार्य योजना के माध्यम से ठोस परिणाम मिलने चाहिए। सहयोग के तहत पुष्पादन, उच्च मूल्य वाली फसलें, औषधीय पौधे, अनुसंधान, क्षमता निर्माण, मूल्य संवर्धन और बाजारोन्मुख बागवानी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों पक्षों ने अरुणाचल प्रदेश में एक सतत और नवाचार आधारित बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंच में निरंतर निवेश का परिणाम है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जनसंबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विदेश साझेदारी को और मजबूत प्रदान करेगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खानमोई ने सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, हॉर्मुज जलडमरु मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। और मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले सभी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अपू गपक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे चेयर्ड अ मीटिंग विद मेंबर्स ऑफ द पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसी। द प्राइम मिनिस्टर सेड एंड द EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. Various reforms to improve ease of living and ease of doing business were also discussed. The members also gave their assessment of the impact of the West Asia conflict on India and the world. The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors, FPIs, in government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. Defense Minister Rajnath Singh today said that India continues to stand out as the world's fastest growing major economy at a time when many countries are facing economic uncertainty, referring to the registered GDP growth rate of 7.7% in the financial year 2025-26. Singh said that the achievement underscores resilience and underlying strength of the Indian economy built over the last 12 years. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Khanal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal said that during the meeting, both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. Central Board of Secondary Education CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In the social media post, the board said students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat today said that India's solar capacity has grown from 2.8 gigawatt to 155 gigawatt in the last 12 years. In a social media post, Shekhawat said that over 4 million homes are illuminated by solar energy and the doubling of solar capacity in the agricultural sector is proof of progress alongside environmental conservation. The 29th edition of the India-US Army-to-Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy, and Lieutenant General Joel Bowell and the Deputy Commanding General of the U.S. Army Pacific. Discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges, and deepening military collaboration in support of shared security interests. In Punjab, at least 9 people were killed and 22 others injured when a vehicle carrying members of a family collided with a truck on the Firozpur-Fazilka road this morning. The victims, all members of the same family, were on their way to Bias to immerse the ashes of deceased relative in the Bias River when the accident occurred. Many people reportedly died on the spot, while the injured were rushed to the hospitals for treatment. Mohsen Rezai, the military advisor to Iran's supreme leader Mojtaba Khamenei, has called on U.S. President Donald Trump to make decisions independently of Israel, stop the blockade in the Strait of Hormuz, and release Iran's frozen assets. In an interview with the television channel, Rezai said that the negotiations between the two sides are at a deadlock and Trump must break this deadlock. He further said that if the U.S. wants to reach an agreement with Iran, the release of frozen Iranian assets is a test that America must pass and the path will be reopened. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have transited through or stayed in Congo, Uganda, and South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. That's all in this news bulletin. Namaskar.
8: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. लीजिए प्रस्तुत है नौकते श्रोताओं का कार्यक्रम.
9: मामा नाम रंजा ठासन आकाशवाणी ईटानगर डिबगढ़ का रंजा वनबंगा पा जी संपर्दा ने लिए नाम नोक देखो बच्चों तारे तजा जून जाम वने रोकता रे खुनी बच्चा को बच्चों को यह जाफुन तांजामा अधेको बढ़ है चुतर नमन. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मठजा अहन अजा मो दिया है मा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चो डी कमिंग इंडिया है दिया के जा को सिसिया थुन डोंग वंग एका अडोंग थुन इकोनॉमी जो डोंग वंग एका आम चो ठोको बाजा अधिक रजिस्टर्ड जीडीपी ग्रोथ रेट जून को 2025-26 फाइनेंशियल रंपा को 7.7% अचीवमेंट पमा छुनता व छिपानी रंपा पा इंडिया है इकोनॉमी चैन पजो खिसो कोई का आम जो चो ठोको एका अलीग सोशल मीडिया पोस्ट ने सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप खन को इंडिया है स्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस सस्टेनेबिलिटी ले क्रेडिबिलिटी है अरुम मा ग्रोथ डाई का ही जो खे सको का आम जो जो ठोको लिखा. अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी परनायक मा जून जो वन बली तारीख को शिलोंग नाम असम राइफल्स डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल विकास लाखरा डमना मोह ठुंटा को इंटरनेशनल जैटरी नाम विजिलेंस ले ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस रंग खो कमला मा तंग रंग चोटो को बाजा अडी को जेटरी नंग सिक्योरिटी चंग होंवांग राजिन को गवर्नर मसीपा ही तुम नंग हवादंडा रंग ले जेटरी नंग पांचवन काम पर से खो रंग चोटो को बाजा अडी को गवर्नर मा इंडो म्यांमार जेटरी पा पंग रंग ले अरे छह ही नंग हांटी पा मेंटेन खो रंग असम राफल ही नंग न्या रंग रो बाजा नाम जो चोटो को एका. Chief Minister Pema Khandu le Deputy Chief Minister Chauna Men le Ahan Dong Hei ma BJP Arunachal Pradesh Hei ma Government Secondary School Chief Bui ko Ek Peer Ma ke naam khan ko Plantation Bangpo Khet Program Huan ta ko Juna Kwa Chao. Adi ka local residents, BJP workers, Nya Viti, Nya Pheito Ti le Volunteers Hei na Dangko Nga Ma Chu Jona Dam ko Bangpo Khet Pa Rang Pa ko Dap Chilo Lo Ka Rakam Rang Medang Thang Ma Run Dong Dong Tong Mission Huan Rang Chu Tho Ko Wa Chao. अडी का ठजा मत बंगफो खेती पमा असन पोंग हेल्दी एनवायरमेंट ले होप मिन जनरेशन ही रंग असन फ्यूचर ए डावांगरा जोंगा ममिन चोटो को बाचा. अडी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीडरशिप खन को चिपानी रंपा डियक ममानी का को डेवलपमेंट ले एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बैलेंस होन पा मत लम ये पजाओ के सको का नाम जाओ चोटो को एका. अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है मबूसी की बच्चा को साइंटिफिक कलेबोरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट पर रोंगसी ट्रांग सी एस आई आर इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी सी एस आई आर आई एच बी टी पालमपुर हिमाचल प्रदेश से दमना एम ओ यू पर सूरी होने का. अरे को एम ओ यू पर डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर टोबम बम ले सी एस आई आर आई एच बी टी डायरेक्टर डॉक्टर सुदेश कुमार यादव नीमा हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर गैब्रियल डी वक्सुल सेक्रेटरी कोच रिया है मिखे को सूरी वन बाजा अडी गोरे पार्टनरशिप पमा मेजरेबल आउटकम वन मिंजोगामा वक्सुल मचो ठोको बाजा. गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैटी परनायक मां अरुणाचल प्रदेश से अच्छी मोंग कल्चरल हेरिटेज बायोडायवर्सिटी लाइ यूनिक आइडेंटिटी पखे सोकरांग कमेमोरेटिव पोस्टर्स तम लिस्ट राम प्रपोजल पर वेलकम जो होने का अधिकार प्रपोजल पर बुसुची बच्चा को शिलोंग नाम चीफ पोस्ट मास्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट सर्कल ब्रजेश कुमार डमना मुंटा को ठोमिन बाजा अधिकार प्रपोज होने का थीम है डाएगा इंडिजिनस ट्राइब्स एंड ट्रेडिशन हेरिटेज साइट्स फ्लोरा एंड फाउना जीआई टेक प्रोडक्ट लाइक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जाओ अधिकार इनिशिएटिव पर अरुणाचल प्रदेश से लीगेसी पर पंग रंग हो है एहो न ले अजत जत आइडेंटिटी ला ट्रेडिशन पर अजा मियन हे तना एहु बजा आम जा चुठो कोएगा जून जंग वन बिली तारीख को वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट व बालेमुना अडोम वो एंटी ड्रग्स ऑपरेशन हुआ टाको छी वन बिली कुटी माला रोग बंगा वन बंगा लाख था हजत नी चाय खू माला छी वन 3.821 केजी ड्रग्स सीज को टा है छी से पे रे वाजा अधिकार छी से तापा वेस्ट कमिंग पुलिस है मा आहान एजेंसी से डमन रूम लामा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बॉम्बिला कोर्ट में ऑर्डर कोता जिनको वन वाजा अधिकार होम मिनिस्टर मामा नतुमा रंग ठो डम को ड्रग्स पर रेफे पर जंचो पा मीना सर्कुलर डम मिनबा तंग रंग हो है हो न जोंगा मा ngat ba cha electoral roll management free fair la inclusive election par rong se rang deputy commissioner office bombdila na macha electoral roll 2026 six special intensive revision sir training par hon wa cha adika program ko eros aeros blo supervisors blo la election department ba official se ma part ka ba pa cha adika deputy district election officer rinchin leta ma accurate electoral roll pa matto alam liya la officer se na field verification pa nya ra la ki lat ma hwan rang chutho ko ba cha is yang wa nam singha dang ko sigar military station he ma operation sadbhavna khan ko wall environment na bol ja ko open air gymnasium pa chu ko ba cha adikare rang ho pa mani rang bang pho he min khet ba cha adika program ko mebo mla oken time commander sigar military station wildlife warden talut siram हादंग फन्ना गांबुरा ले न्यावे तेहि म पाट कवक वाजा मामजो चोठो कोएगा तजा नमक ते खबर तक जो लाथो नता

नमस्कार दोस्तों, नॉक्टे डायरेक्ट न्यूज के बाद फिर से हाजिर हो गई हूँ आपके लिए, आपके खिदमत में। चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

श्रोता कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए बताना चाहूंगी आपको कि पहला गीत आपने सुना ब्रह्मास्त्र फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को धन की फिल्म से अरिजीत सिंह की ही आवाज में।

श्रोता जुबिन नौटियाल के गाए हुए गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपको निराश बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल।

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि पहला गीत आपने सुना आई फिल्म से और इस वक्त हमने पेश किया है इस गीत को मैं मेरी पत्नी और वो फिल्म से मोहित चौहान की आवाज में। और बता दो आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

श्रोता पापोन के गाए हुए इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है और साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे अ स्पेशल रेडियो ड्रामा ऑन पाके टाइगर रिजर्व प्रोड्यूस बाय आरएनयू ईटानगर प्रेजेंटेड बाय अरित्रा मुखर्जी मनोज कुमार शर्मा किशन चेतिया एंड रातुल बोरा।

0: Regional News Unit of Akashvani Itanagar presents Amazing Arunachal. नमस्कार साथियों, आकाशवाणी ईटानगर का रीजनल न्यूज यूनिट आज आप सबको एक ऐसे सफर का साथी बनाएगा जिसमें शांति है, ठहराव है, रोमांच है और है अनजाने को जानने की उत्सुकता। विभिन्नताओं का राज्य अरुणाचल प्रदेश, अनगिनत सांस्कृतिक समन्वय का मेल अरुणाचल प्रदेश, प्रकृति के गोद में कई राज दबाए बैठा अरुणाचल प्रदेश। इन्हीं विशेषताओं के कुछ पहलू से आपको रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ईटानगर का रीजनल न्यूज यूनिट लेकर आया है एक खास प्रोग्राम। हेलो पाक्की, ये एक सफर की सच्ची कहानी है जहां नरेटर की भूमिका में मैं और इत्रो मुखर्जी और अन्य किरदारों की आवाज बने मेरे साथी मनोज कुमार शर्मा, रातुल बोरा और किशन आपके साथ बने रहेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपका दोस्त होने के नाते एक छोटी सी सलाह, स्नैक्स और पानी अपने आसपास रख लीजिए क्योंकि कहानी का मजा खाली पेट तो नहीं आने वाला है ना, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। देखिए, बिना बोले ही मैंने आपके दिल की बात जान ली, तो चलिए और वक्त जाया ना कराते हुए हमारे साथ पाक्के की सफर में। मुझे ईटानगर आए कुछ ही हफ्ते हुए थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े स्टेट और मेरे बीच बस हाय हेलो तक का कॉन्वर्सेशन ही हुआ था कि मुझे सीधे उसके घर के एक खास कमरे में झांकने का आदेश मिला, पाक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक ऐसा विशाल जंगल जिसका विस्तार 862 वर्ग किलोमीटर है। क्यों समझिए कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर समाने के बाद भी इतनी जगह बच जाए कि दो ईटानगर और आ जाए। मेरे अंदर जंगल में मंगल का बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चालू हो गया। भला अरुणाचल से दोस्ती बढ़ाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। मैंने निकाला फोन और लग गया रिसर्च में, थोड़ा टाइप किया, कुछ स्वाइप किया और नतीजा ये निकला कि पाक्के टाइगर रिजर्व में बाघ अकेला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है भाई, ये दूसरा हीरो या यूं कह लीजिए मुख्य किरदार कौन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। तब मुझे आने वाले रोमांच का कोई आइडिया नहीं था। जंगल में बिताए दो दिन मेरे सामने जिंदगी का एक ऐसा दरवाजा खोलने वाला था जिसे बंद कर वापस आना किसी शेर के मुंह से निवाला छीनने जैसा था। सफर की शुरुआत सुबह 6 बजे होना था। घड़ी का कांटा बेहद तेजी से 7 की ओर बढ़ने लगा, लेकिन मेरे ड्राइवर साहब का कोई अता पता नहीं। तंग आकर मैंने खुद ही कॉल लगाया।
1: सर, जी सर।
0: प्रमोद जी के आवाज में एक अजीब सा शौक था, मानो उनके सुकून की नींद से किसी ने बेहद निर्ममता से धक्के मार मार के जगाया हो।
1: अपने 6 बजे बोला था क्या? सॉरी सर, और 8 घंटा लगेगा, अपना लोकेशन दे देना प्लीज।
0: झूठ नहीं बोलूंगा, इरिटेट तो मैं काफी हुआ। पिछले दिन रात को ही मैंने उनको लोकेशन भेज दिया था और एटलीस्ट 3 बार रिपीट मोड में याद दिलाया था कि 6 बजे उन्हें पिक करने आना है। फोन पे लोकेशन देखना तो दूर, वो नींद से ही नहीं जागे। ऐसे ड्राइवर के साथ जंगल में कैसे? मैंने नेगेटिविटी पे लगाम कसी और बैठ गया गाड़ी में। मेरे अंदर का स्कूल बॉय एक्साइटमेंट खाली सड़क पे तेज भागती हुई गाड़ी के रफ्तार के साथ बढ़ने लगा। हमारा डेस्टिनेशन था सेजोसा। नहीं नहीं, कंफ्यूज मत होइए, प्लान तब भी पाक के जाने का ही था, लेकिन गूगल मैप्स ये डायरेक्ट इजाजत नहीं देता। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर ने इसलिए सेजोसा तक का रास्ता मैप के सहारे आने की सलाह दी थी। अरुणाचल की कई अद्भुत चीजों में ये भी एक है। यहां एक जगह से दूसरी जगह जाते वक्त आप कब अंतरराज्य सीमा लांघकर आसाम की सैर कराते हैं पता भी नहीं लगता। गोपुर, बालीजान, घाईगांव, हेलेम, बुरोई, बालीजुड़ी जैसे एक के बाद एक आसाम के छोटे इलाके को नमस्ते कर हमारी सवारी चलने लगी। चलिए आपको रास्ता समझाने की कोशिश करता हूं। आंखें बंद करके एक मैप इमेजिन करिए। उसमें अरुणाचल के दो इलाके ईटानगर और सेजोसा पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब उन दोनों के बीच में एक टेढ़ा मेढ़ा इंग्लिश लेटर यू ड्रॉ करेंगे तो उसके कर्व में जितने शहर गांव आएंगे वो आसाम के अंदर आते हैं और यू के दोनों टिप अरुणाचल में, लेकिन रास्ता आसाम से है ना। मजेदार प्रमोद जी भले ही कम बात करते हो लेकिन उनकी ड्राइविंग स्किल्स गजब की। कब 3.5 घंटे का रास्ता 2.5 घंटे में तय कर लिया समझ ही नहीं आया। हमारी सवारी मेन गेट से घुसकर थोड़ी दूर जाकर एक पुल के सामने आ पहुंची। नदी के ऊपर रस्सी सा ये पुल मानो बाहर के शोर और अंदर की शांति के बीच का कनेक्टर है। पुल के उस पार प्रकृति का राज है, जानवर और पंछियों का इलाका है। गाड़ी गेस्ट हाउस आ पहुंची। वहां मिस्टर ओहे पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। अगले 2 दिन ओहे जी ही थे मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। गेस्ट हाउस में फ्रेश होकर हम पैदल ही निकल पड़े जंगल की सैर पे। ओहे जी और मेरे साथ जुड़ गए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के दर्शन जी। उनके दोनाली के तरफ मेरी नजर पड़ते ही उन्होंने जो कहा वो सुनकर हंसी के साथ साथ थोड़ा डर भी लगा।
2: ये बंदूक ही सहारा है सर, जंगल में कुछ भी हो सकता है।
0: कुछ भी हो सकता है मतलब? मैंने पूछा। हम टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से बहुत दूर थे, यहां बाघ के आने के चांसेस लगभग ना के बराबर।
2: बाघ नहीं सर, हाथी।
0: इससे पहले दर्शन जी हाथी के तांडव के किस्से सुनाते, गाइड ओहे जी एक और पहलू हमारे सामने ले आए।
3: जंगल छोटा हो रहा है और हाथी को ठीक से खाना नहीं मिलता, ऐसे होने से तू क्या करेगा?
0: ओहे जी का घर पाक्के से बस कुछ ही किलोमीटर दूर एक गांव में है। उनसे ही पता चला कि एक पूर्ण विकसित हाथी को दिन में करीब 200 लीटर पानी और 16 घंटे तक पर्याप्त खाना चाहिए होता है। ये अगर उन्हें बिना रुकावट मिलने लगे तब उन्हें जंगल से बाहर खाने की तलाश करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन हम इंसानों को अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिले तब ना। हाथी पे डिस्कशन चल ही रहा था कि दर्शन जी ने सामने की तरफ इशारा किया। एक लकड़ी का बना हुआ सुंदर सा गेट जिस पर 1, 2, 4 तितली। अद्भुत। चलते चलते हम पहुंच चुके थे पार्क के टाइगर रिजर्व के नवीनतम सदस्य बटरफ्लाई पार्क। सोचने वाली बात है, एक जंगल जहां पे खूंखार बाघ मुख्य किरदार है, हाथियों के झुंड से लोग सतर्क है, 300 से ज्यादा पंछियों का प्रजाति आसमान में रंग भरते हैं, वहां मासूम तितलियों का भी अपना विशेष स्थान है। पार्क के घर है करीब 380 विभिन्न प्रकार की तितलियों का, पीला, नीला, लाल, हरा, सफेद, काला, मानो होली पहले ही आ चुकी हो। मेरी आंखें गोल संतरे जैसे तब हुई जब मुझे ओहे जी से पता चला कि हमारे सामने जो तितलियां घूम रही थी वो पार्क के बटरफ्लाई पार्क के 10% से भी कम है। वसंत के मौसम में पलक झपकने से पहले ही एक नई तितली दिख जाती है। तितलियों की रंग बिरंगी दुनिया से आजाद होने की इच्छा तो नहीं थी, मगर दोपहर का सूरज अब पश्चिम की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका था, मतलब हमें आगे बढ़ना था। मैं ओहे जी के नक्शे कदमों पे चलने लगा, मेरे ठीक पीछे दर्शन अपने दुनाली के साथ। हम चलते चलते काफी अंदर तक आ चुके थे। पंछियों की आवाज आसपास की शांति में किसी सुरीली धुन से कम नहीं थी। जंगल इतना घना कि रास्ता भटकने पे सूरज की रोशनी भी ना नसीब हो। मेरी ख्यालों की रेलगाड़ी पे ओहे जी ने अचानक ब्रेक लगा दी। उनका दाहिना तर्जनी अपने होठों पे और बायां हाथ ऊपर की तरफ। इशारा साफ था, हमें एकदम शांत रहना था, कोई आवाज नहीं। क्या कोई जानवर था या खतरा किसी और चीज का? ओहे जी ने अपना बायां हाथ मेरे तरफ घुमाया और ऊपर देखने का इशारा किया। इतने में दर्शन जी का दुनाली कंधे से स्थान परिवर्तन कर हाथों में आ चुका था। मेरे दिल की धड़कनें बेहद तेजी से बढ़ने लगी। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैंने ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। छाती चौड़ा कर बाहें फैलाए विशाल चोंच वाला एक पंछी आसमान को चीरते हुए ऊपर और ऊपर चला गया।
3: हॉर्नबिल, द ग्रेट हॉर्नबिल,
0: ओहे जी ने कहा। याद कीजिए, कहानी के शुरुआत में वादा किया था कि शेर के साथ साथ पाक्के के दूसरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से आप लोगों को मिलवाऊंगा। मिलिए हॉर्नबिल्स के महाराजा से। पाक्के में 4 तरह के हॉर्नबिल बर्ड्स पाए जाते हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल उनमें सबसे बड़ा और मजेस्टिक है। मैं अपनी चुप्पी तोड़ने ही वाला था कि ओहे जी ने दोबारा ऊपर की तरफ इशारा किया। एक और ग्रेट हॉर्नबिल, नहीं, दो और।

घंटों की थकान एक पल में खायो। बर्ड वॉचिंग के लिए दर्शन जी ने पहले ही बाइनोक्यूलर्स दिए थे, लेकिन लाइफ में पहली बार ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को अपने सामने पाकर

0: पत्ता विहीन लंबे उस पेड़ की विशेषता सुनकर मैं दंग रह गया।
1: ऊट पेकर या मायना ऐसे पेड़ ढूंढकर उन पे अपना घोंसला बनाता है और कुछ दिन बाद में उसी घोंसला को कब्जा करके हॉर्नबिल अपना घर बनाता है।
0: पेड़ पे बने अंडे जैसा सुराख इस बात का प्रमाण था। कुछ दिन पहले तक ये एक हॉर्नबिल जोड़े का ठिकाना रहा होगा। हॉर्नबिल का जोड़ा यानी कपल्स। चट मंगनी और पट विवाह का कॉन्सेप्ट हॉर्नबिल्स में नहीं है। उनके प्रेम और विश्वास की ऐसी कहानी ओहे जी ने सुनाई जो किसी भी फिल्म को मात दे दे। हॉर्नबिल्स अपने जीवन साथी के साथ लगभग पूरी जिंदगी निभाता है। नेस्टिंग के 3-4 महीने मादा पेड़ की खोखली जगह में खुद को मिट्टी और मल से सील कर लेती है, सिर्फ एक छोटी दरार छोड़कर, और पूरी तरह नर पर निर्भर हो जाती है। इस दौरान नर हर दिन फल और छोटे जीव लाकर उसे और बच्चों को खिलाता है। जब बच्चे बड़े होने लगे तब मादा बाहर निकलकर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती है।
2: ऐसा कितनी बार हुआ है कि इंतजार करते करते मादा हॉर्नबिल ने घोंसले में ही दम तोड़ दिया।
0: दर्शन जी ने कहा, इसका मतलब साफ था, चाहे कुछ भी हो जाए मादा हॉर्नबिल घोंसले से बाहर नहीं निकलेगी जब तक कि ना नर के दर्शन मिल जाए। तकरीबन 80 से 130 दिन एक छोटे से घोंसले के अंदर कैद। अगली बार जब आपसे कोई प्यार का मतलब पूछे ना तो ये कहानी जरूर सुनाना। अब हम जंगल के और अंदर घुस चुके थे। अचानक मेरी नजर पेड़ों के एक झुंड पे पड़ी। झुंड इसलिए क्योंकि उनमें एक चीज कॉमन थी, उनके जड़ों से शुरू होकर तकरीबन एक इंसान के ऊंचाई समान मिट्टी का ढेर। कुछ पेड़ों में वो ढेर और भी ऊंचा। थोड़ा पास जाके देखा तो उनमें पत्ते, पत्थर और न जाने क्या क्या दिखा। दर्शन जी ने आर्टिफिशियल हॉर्नबिल नेस्ट के बारे में बताया था कि कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पंछियों को घर बनाकर देता है। ये घोंसला तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या कोई नया एक्सपेरिमेंट था? ओहे जी ने मेरी आंखों में सवाल पढ़ लिया था।
1: ये पानी से आ रहे सर, 2-3 महीने बाद ये धुलकर नया बन जाएगा।
0: ओहे जी के मुताबिक हम जहां खड़े थे वहां बरसात के मौसम में तैरना पड़ेगा और पानी का बहाव इतना तेज कि वो अपने साथ साथ मिट्टी, पत्थर, पत्ते बहा कर ले आता है। वही पेड़ से टकरा कर ये ढेर बना देता है। तकरीबन 10-15 मिनट और चलने के बाद पानी के बहाव का एक और प्रमाण मिला। जंगल को 2 हिस्सों में बांटकर एक लंबी रेखा, यही से बहती होगी नदी। अभी यहां बस पत्थर ही पत्थर है। हम इंसान कितनी भी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ ले, प्रकृति के नियमों के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है। पाक्के का सफर मुझे हर पल ये बात याद दिला रहा था।
3: वो देखिए सर,
0: फुर्तीली तेजी से दर्शन जी उस पार पहुंच चुके थे और वो जो मुझे दिखाना चाहते थे वो एक लकड़ी से बना छोटा सा घर था, मचान जैसा, मानो कोई पोस्ट कार्ड हो। लेकिन आपने तो कहा था जंगल के अंदर कोई गांव नहीं है, फिर ये घर किसका है? दर्शन जी की वो हंसी मेरे सवाल के मासूमियत पे थी या मेरे अज्ञानता पे, ये नहीं पता।
2: ये हमारा एंटी पोचिंग कैंप है सर,
0: दर्शन जी ने बड़े गर्व से कहा। वहां के एक युवा बीट

0: कार्ड से मेरी जो बातचीत हुई वो आपको सुनाते हैं।
1: मेरा नाम श्री करचंद तना है।
2: आप क्या काम करते?
1: एंटी पोचिंग के मुकद के इधर उधर तो देखभाल करता है और डाटा से कलेक्ट करता है।
2: क्या क्या दिक्कतें रहती है यहाँ पे ऐसे अकेले रहने के लिए?
1: यहाँ पे अकेले रहने के लिए दिक्कत तो वही है, साथी जो एक साथ बैठने से तकलीफ नहीं होता है, साथी जब कुछ इधर उधर चला जाने से तब थोड़ा अकेला में तकलीफ होता है, नहीं तो तकलीफ नहीं होता है।
2: घर वालों की याद नहीं आती?
1: घर वालों का याद आता है, फिर भी हम अपना ड्यूटी को निभाने का पास सोचता है, इसलिए हम घर भी साल में एक बार जाता है सर।
2: ये कोई पोचिंग कैसे रोकते हो फिर आप?
1: पोचिंग को रोकने के लिए तो हम लोग दिन रात यही में घूमता है फिरता है, इसलिए पोचिंग वाला भी आजकल मतलब नहीं आता है, पहले भी नहीं आता था शायद, अभी भी नहीं आता है। हम लोग
0: एक एंटी पोचिंग कैंप में रहना कितना मुश्किल है ये जानने के लिए मैंने खुद उसके अंदर जाने का फैसला किया। लकड़ी के घर को जमीन से जोड़े रखा है एक लोहे की सीढ़ी, उसके सहारे जब पहली मंजिल पे पहुंचा तो जो चीज सबसे पहले नजर में आया वो था जमीन पर रखा एक रेडियो। उस बेरंग लकड़ी के घर में सबसे चमकती चीज यही वो चीज थी जो करचन जैसे पोचिंग कैंप में रहने वाले लोगों को सभ्यता से जोड़ता है। दो कदम बढ़ाते ही बाई ओर पहला कमरा, उसके ठीक ऑपोजिट में दूसरा। दोनों कमरों में मच्छरदानी, एक दो कंबल, सोलार लैंप्स, कुछ खाली और कुछ भरे हुए पानी की बोतलें और पेट्रोलिंग गियर। करचन और उनके सीनियर बीट गार्ड के यही साथी। उनके चेहरे पे हंसी देखकर ये अंदाजा लगाना नामुमकिन कि उनका डेली लाइफ कितना कठिन है। दोनों कमरों को छोड़ थोड़ा आगे जाके एक जगह जहां लकड़ी के धीमे आंच पे अंडे उबल रहे थे, उसके ऊपर खुला आसमान। पाक्के में लगभग ऐसे 38 सक्रिय एंटी पोचिंग कैंप्स का एक नेटवर्क है जो दिन रात जानवरों की सुरक्षा करते हैं।
3: अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा,
0: ओहे जी ने चेतावनी दी। पोचिंग कैंप से दिखाई दे रहा ढलता सूरज हमारे लिए लौटने का संकेत था। सूरज ढलने से पहले हमें किसी भी हाल में गेस्ट हाउस पहुंचना था। ओहे जी ने वादा किया था गेस्ट हाउस लौटने से पहले एक यूनिक चीज दिखाएंगे, शायद उस राज से पर्दा उठने ही वाला था। सेंटर फॉर बेयर रिहैबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, ये केंद्र भालू के बच्चों को बचाकर उन्हें वापस जंगल छोड़ने का काम करता है। वहां हमारा स्वागत किया दो एशियाटिक ब्लैक बेयर्स ने। ये सेंटर क्यों खास है ये बताया डीएफओ धवन रावत जी ने। शाम को चाय की चुस्की लेते लेते धवन जी ने जो मुझे बताया वो उन्हीं के आवाज में सुन लीजिए।
4: Pagatag Reserve also have a CBRC, Center for Bear Rehabilitation, and this is run jointly by Pagatag Reserve and Wildlife Trust of India. So what we do here, like in Arunachal, there are a lot of cases of bear cubs being orphaned, being abandoned in forest. They are found by the people and most of them bring here because they know there is a Center for Bear. So we raise them, hand raise them, we take them inside the park for making them learning how it's to be living in the park, and then we release them and they become adult and self-sustainable, so they can eat on their own. So in that way, till now 64 bear cubs has been successfully rehabilitated. It's just only one of a kind center, bear rehabilitation center in India.
0: Dhawan ji se rochak baat cheet ke baad dinner karke main seedhe rest mode mein chala gaya. अगले दिन के सफारी के एक्साइटमेंट में सोना तो मुश्किल था, लेकिन बॉडी ने माइंड की एक न सुनी। गाड़ी के तेज हॉर्न से मेरी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। खिड़की से देखा तो ओहे जी और दर्शन जी हाथ हिलाकर गुड मॉर्निंग कर रहे थे। जितनी जल्दी कपड़े बदलना पॉसिबल है मैं उससे भी तेज रेडी होकर सफारी के गाड़ी में बैठ गया। घड़ी में 6:10। कल से आज में सफारी जीप के अलावा फर्क टेम्परेचर में भी काफी था। अगर आपने सफारी जीप पहले नहीं देखा है तो मैं समझाने का कोशिश करता हूं। इस जीप में पीछे वाला हिस्सा पूरा अनकवर्ड होता है ताकि जानवर और पंछी देखने में कोई रुकावट ना आए। इसका एक नुकसान छोटा ही सही लेकिन है जरूर। ऊबड़ खाबड़ जंगल के रास्ते बैलेंस बनाए रखने के लिए आपका सहारा बस वो पतली सी सीट और ऊपर लगा लोहे का रॉड। मैं यही तालमेल बिठाने की कोशिश कर ही रहा था कि ओहे जी ने जीप रोक दी। बगल में बैठे दर्शन जी ने इशारे से गाड़ी पीछे लेने को कहा। हिरन जैसी आगे बढ़ने वाली सफारी जीप अब कछुए के चाल से पीछे हो रही थी। दर्शन जी ने अब ओहे जी के कंधे पे हाथ रखा। दोनों एक साथ मेरी तरफ घूमे और उंगली को गोल घुमा के पीछे देखने को कहा। मैंने पीछे देखा तो एक लंबा सा सूखा पेड़ था। ये क्यों दिखा रहे, मैंने मन ही मन सोचा। इसका जवाब अगले ही पल मिल गया जब मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ देखा। बिना नजरें झुकाए मैं सीट पे बाइनाकुलर्स हथनाने लगा। वे मिलते ही मैंने हाईएस्ट जूम करके देखा, गले में पीले रंग का थैला बांधे सफेद पूछ वाला एक खूबसूरत पंछी।
3: ये मेल रेडेड हॉर्नबिल है,
0: ओहे जी ने बताया। मेरी नजरें तब भी हॉर्नबिल पर, और यहां एक दो नहीं, पूरा का पूरा पेड़ हॉर्नबिल से भरा हुआ था। और वो नीले रंग का पैच, वो
3: फीमेल है सर।
0: गले के ये नीला और पीला पैच रिब्ड हॉर्नबिल्स की पहचान है। ये कल के ग्रेट हॉर्नबिल्स से थोड़े छोटे थे। ओहे जी ने बताया एक मेल रिब्ड हॉर्नबिल का वजन 3.5 किलो हो सकता है। हॉर्नबिल्स की जो प्रेम कहानी कल सुनी थी उसी का छोटा सा एग्जाम्पल मिला। पेड़ पे दर्जनों हॉर्नबिल्स थे लेकिन सब जोड़े में। एक जोड़ा दूसरे जोड़े से एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा था, जैसे किसी फंक्शन में कपल्स अपना अलग से एक कोना बना लेते हैं ना, ठीक वैसे। बाद कुछ ही मिनटों में दर्शन मिला सफेद और काले पंख वाले पाक्के में पाए जाने वाले हॉर्नविल परिवार के सबसे छोटे सदस्य ओरिएंटल बाइट के। ग्रेट और रिज हॉर्नबिल्स जैसे पास से उन्हें देखने का नसीब तो नहीं था, लेकिन नीले आसमान में उन्हें बेधड़क उड़ता देख सारा मलाल दूर हो गया। पथरीला ऊबड़ खाबड़ रास्ता अब रेतीला बन चुका था। पतली सीट और ऊपर लगे लोहे के लॉट के सहारे कैसे जीप में बिना गिरे बैठना है वो मैं भी लगभग सीख ही चुका था, और अब समझ आ चुका था कि चौकन्ना रहना है। लेकिन मेरी नजरें दर्शन जी जैसी कहां। मैं ऊपर नीचे दाएं बाएं देखता रह गया और उधर उन्होंने असली चीज स्पॉट कर लिया।
3: गाड़ी रुका है लेकिन कोई उतरेगा नहीं,
0: ओहे जी ने बड़े शांति से चेतावनी दी। दर्शन जी ने मेरे बाएं और झुककर नीचे देखकर बोला,
5: एकदम फ्रेश है।
0: उनको फॉलो करके मैंने नीचे देखा तो रेत पे निशान थे, जरूर किसी जानवर के थे, कुछ कम नहीं।
5: टाइगर,
0: अंग्रेजी में एक कहावत है, chills down the spine.

0: मेरे शरीर के अंदर मानो बिजली दौड़ गई। पाक के टाइगर रिजर्व में आने का सबसे बड़ा कारण यही तो था। खुले जंगल में टाइगर देखने का ख्वाब आपके अंदर एक अनजाना एक्साइटमेंट पैदा करता है, लेकिन जब वो ख्वाब हकीकत में बदलने लगे तब एक्साइटमेंट को डर में ट्रांसफर होते ज्यादा समय नहीं लगता। मैं अपने जगह से हिला नहीं, सच बताऊं तो हिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर से शरीर की सारी ताकत खींच लिया। मेरी नजरें ओहे जी पे पड़ी, वो दर्शन जी के तरफ देख रहे थे। दर्शन जी अभी भी सेम पोजीशन पे। मैंने धीरे से गर्दन को झुकाया, रेतीले जमीन पर टायर के निशान के पास पग मार्क्स, एक दो नहीं कई सारे। मेरे हार्ट बीट्स ड्रम्स जैसे बजने लगे, लेकिन दर्शन जी ने मेरे एक्साइटमेंट के गुब्बारे फूलने से पहले ही पंक्चर कर दिया।
1: टाइगर यहां सुबह होने से पहले गुजरा है, अभी अंदर घने जंगल में चला गया होगा।
0: दर्शन जी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के प्रमुख गार्ड हैं। उनके तजुर्बे और इंस्टिंक्ट्स को चैलेंज करने का कोई कारण मेरे पास नहीं था, लेकिन रेत पे बने इतने ताजे पग मार्क्स देखकर जो डर और एक्साइटमेंट का मिश्रण मेरे अंदर पैदा हुआ था वो बयां कर पाना नामुमकिन है। अब हमारी सफारी आ पहुंची खारी बीट पे। ये एक इंपॉर्टेंट एंटी पोचिंग और वन सुरक्षा क्षेत्र है। ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त यहीं पर किया गया था। ओ बताना भूल गया, यहां पर कुछ खाना हो तो राशन अपने साथ ही लेके आना होता है। यहां के कुक बड़े प्यार से उसे पकाते हैं। जंगल के एकदम अंदर रहने का मन हो तो यहां इसकी भी व्यवस्था है, मगर खाने का रूल सेम। खारी बीट का एक चक्कर लगा के मैं वॉच टावर पे सेटल हो गया। अगर संसार का मायाजाल ना हो तो यहां सुबह को शाम में और रात को दिन में बदलते देखना आपका एकमात्र लक्ष्य होगा। पहाड़ और जंगलों के नीचे पाक के नदी के रेतीले किनारे मानो कोई विशाल पेंटिंग मेरे सामने था। वॉच टावर के ठीक नीचे एक खाली जगह थी। लोकल स्टाफ से पता चला वहां जानवरों के लिए नमक बिखेरा जाता है ताकि उन्हें जरूरी मिनरल्स मिल सके, खासकर सोडियम और क्लोरीन, जो उनके नेचुरल डाइट में अक्सर कम होती है। कुक ने ब्रेकफास्ट परोसते हुए कहा कल रात को ही यहां हाथियों का झुंड आया था। खारी बीट में हाथी हिरन हॉर्नबिल का दिख जाना काफी आम बात है, लेकिन दिन में शायद कुछ देख पाना मुश्किल था। मैं किस्मत को कोस ही रहा था कि दूर नदी किनारे कुछ दिखा। ध्यान से देखा तो वो बार्किंग डियर्स थे, अपनी प्यास बुझाकर पलक झपकते ही जंगल में गुम हो गए। हमारी सफारी का दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला था। वॉच टावर से बैठ के जिस जगह को अब तक निहार रहा था, गाड़ी मिनटों में वहां पहुंच गई। ओहे जी को पता था एग्जैक्टली कहां नदी सबसे कम गहरा है। उन्होंने एक्सीलरेटर जोर से दबाया। जीप थोड़ा लड़खड़ाई जरूर, लेकिन पत्थर और पानी चीरती हुई जा पहुंची नदी के उस पार। अब जो मेरे सामने नजारा था वो सपनों की दुनिया से कुछ कम नहीं। घने लंबे पेड़, ऊंचे पहाड़, पत्थर और नदी। जुरासिक पार्क मूवी का सेट जरूर यहीं से प्रेरित होकर बनाया गया होगा।
2: एलिफेंट, एलिफेंट,
0: दर्शन जी ने चिल्लाया। दो दिन में पहली बार उनके आवाज में मुझे एक बेचैनी या यूं कहिए डर महसूस हुआ। मुझसे और रहा नहीं।

0: मैं लोहे के रॉड को पकड़ के खड़ा हो गया। हमारे गाड़ी से ज्यादा 50 मीटर दूरी पे एक हाथी खड़ा था। दर्शन जी ने पहले ही बताया था कि इस जंगल में हाथी अचानक कहीं से भी आ सकता है। उस समय संयम से काम लेना सबसे जरूरी होता है। थोड़ी सी भी भूल हाथी को नाराज कर सकती है। हमने कुछ देर इंतजार किया, ये सोचकर कि हाथी शायद अपना रास्ता बदल ले, लेकिन नहीं, वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। दर्शन जी ने लोकल लैंग्वेज में कुछ कुछ बोला और उतर गए गाड़ी से। उनके हाथ में एक गुलेल था। फॉरेस्ट गार्ड्स आमूमन ऐसे जानवरों का ध्यान भटकाते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद हाथी महाराज को हम पर, खासकर दर्शन जी पर दया आई। अपनी सूंड उठाकर हमें अलविदा कर उसने आगे बढ़ने का रास्ता दिया। कुछ किलोमीटर ऐसे ही नजारे देखने के बाद हमारी जीप एक जगह जाके रुक गई। आगे रास्ता बिल्कुल नहीं था। जंगल इतना घना कि अंधेरा भी कैद हो जाए।
1: और आगे नहीं जाएगा सर,
0: ओहे जी ने बताया। सफारी खत्म हो चुकी थी, अब वापस लौटने का वक्त था। किसी भी अच्छे चीज के अंत होने पे एक खालीपन महसूस होता है, दिल में एक बेचैनी सी होती है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो। 2 दिन में पाक के जैसे विशाल अस्तित्व को पूरा समझना शायद नामुमकिन था, लेकिन उसकी रूह को महसूस करने के लिए ये वक्त काफी था। हॉर्नबिल्स की दुनिया में खोना, करचन की आंखों में जंगल के प्रति समर्पण देखना, सन्नाटे से बातें करना और दर्शन जी और ओहे जी की दोस्ती में एक नया परिवार पाना, ये सब महज यादें नहीं, एक बड़ा सबक था। पाके की ये हरियाली हमें सिखाती है कि जब इंसान लालच छोड़कर को एग्जिस्टेंस का रास्ता चुनता है तो जंगल एक जिंदा त्योहार बन जाता है। पाके में हॉर्नबिल कॉन्जर्वेशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिस ट्राइब का शौक था हॉर्नबिल शिकार, आज वही उनके सुरक्षा में प्रमुख है। अब जब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पूरे अरुणाचल में चर्चा का विषय है, तो हमें दोबारा अपने आप को याद दिलाना होगा कि अगर हम ठान ले तो हम सिर्फ विनाश नहीं बल्कि संरक्षण के नए आयाम लिख सकते हैं। ये सफर खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक वादा है। इस विशालता के सामने खुद को बार बार ढूंढने और इस नए रिश्ते को निभाने का।
2: रीजनल न्यूज यूनिट ऑफ आकाशवाणी ईटानगर प्रेजेंट्स अमेजिंग अरुणाचल।

अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

नमस्कार दोस्तों, आदि दैनिक न्यूज के बाद स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए आगे लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ हम बातें करेंगे एक ऐसी कलाकार के बारे में जिन्हें आप सभी लोलो कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, 25 जून 1974 को जन्मी करिश्मा कपूर उस कपूर खानदान से हैं जिन्हें हिंदी फिल्मों का प्रथम परिवार कहा जाता है। कपूर खानदान की महिलाएं फिल्मों में अभिनय नहीं करती। शशि कपूर की बेटी संजना ने इस परंपरा को तोड़ा, लेकिन उन्हें फिल्मों में सफलता नहीं मिली। सही मायनों में करिश्मा कपूर इस कपूर खानदान की पहली सफल महिला कलाकार है। करिश्मा का निकनेम लोलो है। करिश्मा की नानी का नाम गिना ब्रिगेडा लोलो ब्रिगेडा था, और यहीं से लोलो नाम करिश्मा की मां बबीता ने लिया। करिश्मा को बॉबी देओल के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन बॉबी की फिल्म शुरू होने में वक्त था, इसलिए करिश्मा ने इंतजार करना ठीक नहीं समझा और प्रेम खेदी से अपना पहला फिल्मी करियर की शुरुआत की। करिश्मा ने जब बॉलीवुड में एंट्री ली तो उनके लुक को लेकर काफी मजाक भी बनाया गया। किसी ने उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहा तो कुछ ने कहा कि वे लड़के जैसे दिखती हैं। लुक के लिए आलोचनाओं के बावजूद करिश्मा को साइन करने के लिए निर्माताओं में होड़ मची हुई थी। इसके पीछे उनका कपूर खानदान से होना था। प्रेम केदी सफल रही और 1992 में करिश्मा की छह फिल्में रिलीज हुई। करिश्मा की दूसरी फिल्म पुलिस ऑफिसर थी, जिसमें वे जेकी श्रॉफ की नायिका थी। फिल्म देखने के बाद करिश्मा के चाचा ऋषि कपूर ने

कहा था कि फिल्म में जैकी करिश्मा के अंकल नजर आते थे। इधर राजा बाबू 1994 को रिलीज हुई और इस फिल्म में करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी बेहद पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ में की जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही सफल रही। करिश्मा ने उस दौर के सारे कलाकारों के साथ काम किया, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, सनी देओल, गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, इन सभी के साथ उसने काम किया। 90 के दशक के फिल्मों का स्तर निम्नतम था, हीरोइनों के लिए करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हुआ करता था, लिहाजा करिश्मा ने जो भी फिल्म मिली साइन कर ली थी। राजा हिंदुस्तानी 1996 को रिलीज हुई और राजा हिंदुस्तानी करिश्मा के करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। पहले यह फिल्म ऐश्वर्या राय करने वाली थी, लेकिन बाद में करिश्मा उनकी जगह आ गई। तो इसी बात पर चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बताऊंगी आपको और भी बहुत करिश्मा कपूर यानी कि लोलो के बारे में इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आनंद लेते हैं इस गीत का राजा हिंदुस्तानी फिल्म से।

श्रोता, आपने सुना इस गीत को राजा हिंदुस्तानी फिल्म से। दोस्तों, करिश्मा कपूर को डेविड धवन अपने लिए भाग्यशाली मानते हैं। डेविड के साथ करिश्मा ने राजा बाबू, अंदाज, कुली नंबर वन, जुड़वा, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई जैसे फिल्में की, जिसमें से ज्यादातर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। जुबेदा, राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, फिजा जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय कर करिश्मा ने सबको दिखा दिया कि वो भी बहुत अच्छा अभिनय कर सकती है। दिल तो पागल है में शाहरुख और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े कलाकारों की तुलना में छोटा रोल होने के बावजूद करिश्मा ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। करिश्मा को राजा हिंदुस्तानी और फिजा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड और जुबेदा के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। करिश्मा का नाम अजय देवगन से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि यदि दोनों ने शादी की होती तो बात ही कुछ और थी। वर्ष 2002 में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई, जो कुछ महीनों के बाद टूट गई। करीना ने तो अभिषेक को कहते हैं कि जीजू कहकर पुकारना भी शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि अभिषेक से करिश्मा की मां ने कई कमाई पूछ ली थी, ऐसा कहा जाता है, पर कितना सच है ये पता नहीं था। 2003 में करिश्मा ने इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर से विवाह रचाया। करिश्मा और संजय की एक बेटी समायरा और एक बेटा कियान है। शादी के कुछ वर्षों बाद दोनों के बीच संबंध खराब होते चले गए। कई कोशिश के बावजूद जब रिश्ते में सुधार नहीं आया तो दोनों ने तलाक का मन बना लिया। 2016 में दोनों ने तलाक भी ले लिया।

दोस्तों आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का कृष्णा फिल्म से। विवाह के बाद करिश्मा ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गई। जब संजय से खटपट बढ़ गई तो वे अलग रहने लगी, तो उन्होंने 2012 में डेंजरस इश्क फिल्म से वापसी की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं कर पाई। अपनी बहन करीना कपूर को करिश्मा सबसे अच्छा दोस्त मानती है। जब करिश्मा तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी तब करीना ने उनका भरपूर साथ दिया। दोस्तों इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीत और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे निशी डायलेक्ट न्यूज। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

शुद्ध आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का और पहला गीत आपने सुना सैयारा फिल्म से और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को पार्थिव गंधर्व की आवाज में।

श्रोता, इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि आपसे बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे अरुणाचल न्यूज रील।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप और अरुणाचल न्यूज रील। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए श्रोता, इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पाश्चात्य संगीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत का।

श्रोता कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आइए बता दूँ आपको कि पहला गीत हमने पेश किया है आपके लिए आशा फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस गीत को मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म से, माफ कीजिएगा, तुलसी फिल्म से, और इस गीत के गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर।

श्रोता, शोर फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। वेल, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता पीबी देवरी के साथ मुझे, यानी कि आपकी दोस्त, आपकी आरजी मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई

0: लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा

तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों, तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गुलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं दिल्ली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुल्टू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत, यंग था वो मेरी जैसा, तो अब मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा यार तुम लिख हमारे यहाँ दिखाओ, तुम क्या कहानी लिख, तो मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्हें कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गया और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था, तो फिर मुझे वहां से लेटर आया मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा, पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला, तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए उत्साह प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
2: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, एक खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है, कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं, या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है, तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
2: देखिए, कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से, चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है, तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप, और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
2: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सकता है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
2: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहे, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर, लेकिन जो रचनात्मक है जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में अपने अपनी चेतना में अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वो महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर,
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे, जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से, और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाए हैं। इस संदर्भ में सर, विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र।
3: जी।
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है।
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सब के बीच में सेतु का

0: काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में, साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं, और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है, तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, या सुभद्रा कुमारी चौहान हों, हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया, और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें, तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा, लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो चाहे हरिप्रसाद

0: चौरसिया जी हों
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई,
1: जी
0: लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता
1: बिल्कुल
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना हूं। तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए, और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में
1: जी
0: सुने,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं,
1: जी
0: उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean, sunflower, mustard oil, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Nabanno in Kolkata, Mr. Vaishnav said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10 Amrit Bharat stations have already been completed in the state, while 9 Vande Bharat Express trains and several Amrit Bharat trains are currently in operation.
5: 60 new generation trains we are planning. In coming 4 to 5 years, these trains will be inducted and Kolkata Metro will get a totally new generation of trains. As the work gets completed on Chingri Ghata area, other sections, a lot of improvement will happen in the mobility in Kolkata.
4: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship. The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy, development cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority on India. He said Nepal and India are not merely two countries but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid the West Asia crisis. Tensions across West Asia escalated sharply on Saturday after Iran launched ballistic missiles towards United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. According to the U.S. Central Command, Iran fired 7 ballistic missiles following U.S. strikes on Iranian coastal surveillance and radar installations at Keshm Island and Goruk near the Strait of Hormuz. Initial assessments indicated that 6 missiles were intercepted while a 7th failed to reach its target. There were no immediate reports of casualties among U.S. personnel. In hockey, Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. For India, Ashish Purthy started with a hat-trick as skipper Ketan Kushwaha scored the other goal. Meanwhile, Indian women's team clinched the bronze, beating South Korea 3-0. And with that, we end this news bulletin. नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा, ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। सिंगापुर ने भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाई और टेनिस में रूस की मिर्रा आंद्रेयेवा ने महिला सिंगल्स वर्ग का अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों से बातचीत में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति ने भारत को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान सुखोई SU-57 देने और भारत में इसके संयुक्त उत्पादन और तथा एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों का प्रस्ताव किया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
4: इस बीच दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 3 सैन्य कर्मियों सहित 9 लोग मारे गए हैं। लेबनान की सेना के अनुसार हवाई हमले में नबीते शहर और मर्जयून कस्बे को जोड़ने वाली सड़क को निशाना बनाया गया, जिसमें एक ब्रिगेडियर, एक कैप्टन और एक अन्य सैनिक मारा गया। ये हवाई हमला इजरायल और लेबनान के बीच नए युद्ध विराम समझौते के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। इजरायल की सेना ने इस हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। किया गांव पर हुए एक अन्य हमले में 6 नागरिक मारे गए और 4 घायल हो गए। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर आज यूक्रेन द्वारा किए गए बड़े ड्रोन हमले के बाद स्थानीय प्रशासन ने निवासियों से घरों के भीतर रहने की अपील की है। इस हमले को रूस के भीतर गहराई तक निशाना साधने की यूक्रेन की बढ़ती क्षमता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
7: सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेग्लोव ने लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। उन्होंने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में संभावित व्यवधान की भी चेतावनी दी है। इस बीच लेलिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने दावा किया है कि शहर और उसके आसपास के इलाकों में 141 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ गया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आमने सामने बैठक के प्रस्ताव को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसी मुलाकात का कोई अर्थ नहीं है। पुतिन के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस की स्थिति आगे और अधिक कठिन हो सकती है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
4: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जन संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
4: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सिंगापुर सरकार ने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीन से प्रसारित 14 पोस्ट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
8: आरोप है कि इन पोस्ट के माध्यम से भारतीय समुदायों को निशाना बनाया गया और सिंगापुर की बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक और एक्स से इन पोस्ट पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। सिंगापुर के गृह मामलों के मंत्री एडविन टोंग ने कहा है कि सरकार विदेशी तत्वों द्वारा सिंगापुर की नस्लीय सद्भाव को कमजोर करने वाले विचारों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के प्रसार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को कानूनी और संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि दोनों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल रही है। इमरान खान और बुशरा बीवी भ्रष्टाचार के कई मामलों में जेल में बंद है। पार्टी नेता और खैबर पख्तूनवा के मंत्री शफी जान ने दावा किया कि इमरान खान और उनकी पत्नी को रिश्तेदारों और पार्टी सदस्यों से मिलने से रोका जा रहा है। चीन ने आज दुर्लभ लाल पांडा का एक जोड़ा ताइवान की राजधानी ताइपे में अधिकारियों को सौंपा। ये एक दशक से अधिक समय बाद दोनों पक्षों के बीच वन्य जीवों का पहला आदान प्रदान है। 3 वर्षीय नर और 2 वर्षीय मादा लाल पांडा को फिलहाल 1 महीने के लिए अलग अलग एकांतवास में रखा जाएगा ताकि वे नए वातावरण के अनुरूप ढल सकें। इसके बाद दोनों पांडा को ताइपे चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। रूस की मीरा एंड्रीवा ने पहला महिला सिंगल्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में मीरा एंड्रीवा ने मा याहा च्वासलिंका को हराया। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज़ेवेरेव और फ्लेवियो कोबोली आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। सिंगापुर ने भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाई और टेनिस में रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स वर्ग का अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with the World News. The headlines. Russian President Vladimir Putin says any attempt to undermine India's sovereignty will boomerang under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles toward U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talk with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Singapore blocks social media posts targeting Indian community. And in tennis, Russia's Mira Andreeva clinches maiden women's single French Open title. Russian President Vladimir Putin has said that any attempt to undermine India's sovereignty through threats of sanction would boomerang under Prime Minister Narendra Modi's leadership. Speaking to heads of leading global news agencies on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum, Mr. Putin emphasized India's independent decision-making and its commitment to safeguarding national interests. He remarked that India has consistently made decisions based on its own interests, regardless of external pressure. Mr. Putin said relations between Russia and India are built on mutual trust and extend beyond trade. He noted that both countries are actively engaged in joint research and development projects, including collaboration on the BrahMos supersonic cruise missile program. Yesterday, the Russian president offered fifth-generation stealth aircraft Sukhoi Su-57 to New Delhi and proposed its joint production in India and integrated air defense systems. Tensions across West Asia escalated sharply today after Iran launched ballistic missile towards United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. More from our West Asia correspondent.
10: The conflict in West Asia entered a dangerous new phase today as Iran launched ballistic missile towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. Gulf and American air defense systems intercepted most of the incoming missiles, preventing casualties. The strikes come hours after U.S. forces targeted Iranian radar and surveillance site in Kashm Island and in Koruk following reports of Iranian drone activity near the Strait of Hormuz. The developments have further strained already fragile diplomatic efforts and raised concerns over maritime safety in one of the world's most critical energy corridors. Meanwhile, a fragile U.S.-backed ceasefire in Lebanon suffered another setback after an Israeli airstrike targeted a Lebanese military vehicle on the southern Lebanon. Diplomatic efforts aimed at controlling hostilities have come under increasing pressure as military exchanges continue across multiple fronts. U.S. President Donald Trump has claimed that sustained operations have significantly reduced Iran's missile capabilities, a claim that is rejected by Iran. With ceasefire negotiations stalled and regional tensions mounting, fears are growing that conflict could expand further in the coming days. Vinod Kumar for World News from Dubai.
9: Lebanese authorities said the strike killed three soldiers, including a brigadier general and a captain. Lebanese President Joseph Aoun condemned the attack as a violation of the ceasefire and Lebanese sovereignty. The Israeli military later said it had identified what it described as a potential threat in the area and that the incident was under review. Lebanon has officially inaugurated its second international airport, a major infrastructure milestone that is expected to begin serving passengers within the coming weeks. Lebanese Prime Minister Nawaf Salam arrived at the newly designated Rene Mouawad Airport to lead the opening ceremony. The new facility aims to ease pressure on Beirut's Rafik Hariri International Airport, which has long been the country's sole international gateway. The airport is located in the coastal village of Kliath in the Akka region, around 100 kilometers north of Beirut and just 5 kilometers from the Syrian border. It is expected to boost connectivity and economic activity in one of Lebanon's most underdeveloped areas. The airport is named after Rene Mouawad, Lebanon's president-elect who was assassinated in a Beirut bombing in 1989, just days after his election. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need. In his opening remarks during a meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi this evening, Dr. Jaishankar said India and Nepal share a very special relationship.
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border. Our two countries have always stood by each other in times of need. In the wake of the ongoing crisis in West Asia, the Middle East, we have ensured uninterrupted fuel supplies to Nepal. The importance accorded to this relationship by both sides has only recently been demonstrated. We believe that today there is opportunity to decisively shift the trajectory of India-Nepal relations and to realize the full potential of our ties.
9: The External Affairs Minister said the bilateral ties have steadily developed in areas like trade, commerce, investments, energy development, cooperation, education, disaster response and culture. Mr. Khanal said India is Nepal's most important partner and Nepal has placed highest priority to India. He said, Nepal and India are not merely two countries, but stakeholders of a proud ancient civilization. He thanked India for fuel and fertilizer supply amid West Asia crisis. This is Akashwani. You are listening to World News. We bring you the top international news and updates from around the globe. The Singapore government has ordered three social media platforms to block access to 14 posts believed to have originated from China. The posts allegedly targeted the Indian community and sought to undermine Singapore's model of multiculturalism. The police have issued directions to YouTube, Facebook and X to take all reasonable steps to prevent Singapore users from accessing the content. Singapore's second minister for Home Affairs, Edwin Tong, told reporters that the content appears to have originated overseas. He said